गीगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। सुबह के 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। कुछ ही पलों में श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न

0: पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 kHz पर। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

इस भजन में यह वर्णन है कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है, एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं कि वो भूल जाता है भगवान का नाम लेना, वही एक एक अवस्था को लेकर समझा।

और श्रोताओं, इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। आज की अर्चना में जिन कलाकारों को आपने सुना वो थे हरिओम शरण, अनूप जलोटा और अनुराधा पोडवाल।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। स्वर था भूपेंद्र सिंह का और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं चिंतन। चिंतन में आज का विषय है सबसे उत्तम और सहज व्यायाम है प्रातः भ्रमण, और जानकारी दे रहे हैं श्री संजय कुमार बांठिया।
1: सबसे उत्तम और सहज व्यायाम है प्रातः भ्रमण। प्रातः भ्रमण के समय अपना मन एवं मस्तिष्क शांत और द्वंद शून्य रखने की चेष्टा करें। अकेले हो तो बहुत ही अच्छा है, कोई मनपसंद साथी है तो भी अच्छा है। यदि जीवन साथी साथ में भ्रमण करे तो वो सर्वोत्तम है। स्वस्थ शरीर के लिए जितना जरूरी संतुलित भोजन करना है उतना ही जरूरी संतुलित व्यायाम। टहलते समय आरामदेह वस्त्र ऋतु अनुसार पहने। अवसाद के मरीजों के लिए प्रातः भ्रमण शांति एवं प्रसन्नता प्रदान करता है। मानव बिना भोजन महीनों तक जी सकता है, पानी के बिना भी कुछ दिनों तो काट ही सकता है, परंतु वायु के बिना वो कुछ मिनट भी नहीं निकाल सकता। अतः शुद्ध वायु सेवन हमारी पहली आवश्यकता है। शुद्ध वायु साधारणतः प्रातः 4 से 6 बजे के बीच में सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय व्यक्तियों का वाहनों का आवागमन न्यूनतम होता है, गतिविधियां शोरगुल भी न्यूनतम होते हैं, अतः सबसे अधिक शुद्ध वायु मिलती है। टहलने का व्यायाम बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए उपयोगी है। जो लोग अन्य व्यायाम करने में असमर्थ हैं उनके लिए तो प्रातः भ्रमण बहुत ही आसान होता है। इससे सिर से पांव तक करीब 200 मांसपेशियों की हल्की हल्की कसरत हो जाती है। हृदय गति भी इस दौरान 72 से बढ़कर 82 तक हो सकती है, लेकिन दिल पर अन्य व्यायामों की तुलना में अधिक जोर नहीं पड़ता है। प्रसिद्ध विचारक जूलियट सैनफोर्ड के अनुसार टहलना न केवल जीवन की आवश्यकता है अपितु एक कला भी है और संसार की सर्वश्रेष्ठ जरूरत भी है। प्रातः टहलने से फेफड़े शुद्ध वायु को अधिक से अधिक लेकर रक्त को ठीक प्रकार से साफ कर पाते हैं। गहरी सांस लेने से हमारे श्वसन संस्थान को फायदा होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वास संबंधी रोगों से बचाव होता है। शुद्ध एवं ठंडी वायु के स्पर्श से पूरा स्नायु तंत्र स्वस्थ रहता है, इससे नींद भी अच्छी आती है, तनाव दूर होता है। मानसिक विकार के लिए भी प्रातः भ्रमण बहुत ही लाभकारी रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सने सने बढ़ती है। प्रातः जल्दी उठने के लिए शुरू में हमें अलार्म या घड़ी का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों तकलीफ सी होने के उपरांत भी ये धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और आप स्वतः ही समय पर उठकर प्रातः भ्रमण के लिए निकल पड़ेंगे। प्रश्न यह उठता है कि प्रातः भ्रमण में कितनी दूरी तय की जाए। आदर्श भ्रमण 4 से 5 किलोमीटर सही रहता है, पर शरीर की बनावट और आयु एवं विकार अनुसार इसमें कमी की जा सकती है। प्रातः भ्रमण के दौरान विशेषकर सर्दी के मौसम में कुछ मिनट बीच बीच में हल्की सी दौड़ भी लगाने से शरीर में गर्मी आती है, जिससे टहलना और आसान एवं सुखदायी हो जाता है। टहलते समय गहरी सांस लेने की आदत भी धीरे धीरे विकसित करनी चाहिए। टहलते समय शुद्ध

0: विचार लाएं, वो प्रकृति के बिखरे सौंदर्य का अवलोकन करना चाहिए ताकि रोगों से मुक्ति मिल सके। टहलने का मार्ग भी समय समय पर परिवर्तित करते रहना चाहिए, संभव हो सके तो टहलना रिहायशी आबादी एवं कल कारखानों से दूर बाग खेत उद्यान जहां पेड़ पौधे युक्त गार्डन विशेषकर हरी घास पर करना चाहिए। यदि घास पर ओस की मात्रा मिल जाए तो नंगे पैर भ्रमण शरीर के लिए विशेषकर नेत्र ज्योति के लिए बहुत ही लाभप्रद रहता है। यदि यह स्थान आबादी से बहुत दूर है तो घर के आसपास खाली जमीन पर पेड़ पौधे एवं घास विकसित करके भी इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। यदि प्रातः भ्रमण के उपरांत दिनचर्या में संतुलित भोजन लिया जाए यथा स्वास्थ्य में अभूतपूर्व प्रगति होती है। टहलने से पूर्व 2 से 3 गिलास पानी आवश्यकता अनुसार लेने से एवं दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी का सेवन करने से और साथ ही हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, चोकरदार आटा, दलिया, मुरक्का, छिलके वाली दाल, खजूर, नारियल इत्यादि पौष्टिक आहार का सेवन करने मात्र से एवं तली भुनी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मादक द्रव्य, चाय, कॉफी, तंबाकू, मदिरा को हमेशा के लिए त्याग करने से मनुष्य बहुत ही उत्तम एवं स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। प्रातः भ्रमण करने से पूर्व सोच आदि से निपट लेना चाहिए। टहलने के दौरान पसीना आना अति उत्तम रहता है, जिसे टावल से पहुंचकर और उसके उपरांत स्नान करना आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए उत्तमदायक रहेगा। धन्यवाद।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे, सबसे उत्तम और सहज व्यायाम है प्रातः भ्रमण, और ये जानकारी दे रहे थे श्री संजय कुमार बांटिया। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में अब आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

और इस सभा में सुबह 7 बजे सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा धीरे सही पर निरंतर चलें, साथ ही जानेंगे रेडियो सुनने के लाभ। पुराने फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे श्रोता फिल्म संगीत में। समय होगा सुबह 7:30 और 8:15 पर सुनिएगा सेहत से जुड़ा कार्यक्रम आपकी सेहत। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा प्रसूति फिस्टूला और प्रसव काल की समस्याएं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगी डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी। सुबह 9:10 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, और 9:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे अनुभव से सीख और सावधानी पर, साथ ही सुनिएगा लघु नाटिका मुझे बढ़ने दो, और जानकारी का विषय होगा गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए कौशल विकास के अवसर।

शाम 5 बजे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी में आज संवाद का विषय होगा आज की बचत कल का सहारा। साथ ही जानेंगे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे शाम 6:05 पर और शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा फसल अवशेष प्रबंधन। साथ ही आकाशवाणी गांव में के क्रम में आज सुनिएगा किशनगंज के किसानों और ग्रामवासियों से बातचीत पर आधारित क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। और आज कार्यक्रम चौपाल में जानकारी का विषय होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर श्रोता सुन पाएंगे शाम 7:30 पर और रात्रि 8 बजे का समय रहेगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। कुछ ही पलों में श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार सुनेंगे।

0: अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुम् आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत् प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्यप्रदेशे पूर्वीय उत्तरप्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़

0: झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्यप्रदेशे पश्चिम उत्तरप्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत् न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। सुबह के 7 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

रात की बातें तकिए में कहीं खो जाती है, सुबह आते ही उम्मीदें फिर जाग जाती है। थोड़ी रोशनी थोड़ी मुस्कान, थोड़ा सा ये सफर कि थोड़ी रोशनी थोड़ी मुस्कान, थोड़ा सा ये सफर, इन छोटी छोटी चीजों से जिंदगी खास बन जाती है। और जब हम देखना शुरू करते हैं तो कितना कुछ खास है हमारे आसपास, वो नजर आना शुरू हो जाता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल, प्रोग्राम है नमस्कार कोटा। तो जी स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में, गुड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ निशा आपके साथ। तो बताइए चाय बन गई आपकी या अभी भी आप किचन तक जाने का मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं? वैसे सुबह के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि हम उठने से पहले इतना ही सोचते हैं कि बस 2 मिनट और सो लें, और वो 2 मिनट कब 25 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर जब नींद खुलती है तो दिमाग बोलता है अरे आज फिर लेट हो गए, और फिर शुरू होती है भागदौड़ जो सुबह से शाम और रात तक हमें रुकने नहीं देती। कोई दिन बहुत अच्छा गुजरता है, कोई बहुत खराब। किसी दिन टास्क पूरे हो जाते हैं, किसी दिन अधूरे। कभी ज्यादा थक जाते हैं तो कभी काम ही नहीं होता। मतलब हर दिन अलग, हर दिन का मजा अलग, और हर दिन का स्ट्रेस भी अलग। और इसी सुबह शाम रात के फेर में वक्त गुजरता रहता है और खामोशी से हम आगे बढ़ते रहते हैं। आज किसी को बड़ी खुशी मिलेगी तो किसी का बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी की नई शुरुआत होगी तो किसी के सफर का अंत। कोई कहीं जीत जाएगा और कोई कहीं हार जाएगा। कोई लोगों के बीच हंसेगा तो कोई अकेला तन्हाई से लड़ेगा। यानी कि हम जिधर नजर घुमाकर देखेंगे अपने आसपास कहानियां ही कहानियां मिलेंगी, क्योंकि जिंदगी का सफर तजुर्बों की दास्तान है।

जी हाँ, सफर है तो मुश्किलें भी आएंगी, और जब मुश्किलें आएंगी तो हम उन्हें कोशिश करते करते पार करना भी सीख जाएंगे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल, और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्कार कोटा।

और जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। और श्रोताओं तापमान की बात करें तो कल का जो अधिकतम तापमान था वो दर्ज किया गया 43.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 29.1 डिग्री सेल्सियस।

और इसी के साथ प्रोग्राम नमस्कार कोटा को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और जो भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 22 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

और दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत में हमने बात की थी ना कि हमारे आसपास हर इंसान अपनी कहानी लिख रहा है, और पता है हम गलती कहाँ करते हैं? जब हम अपनी कहानी को दूसरों से कंपेयर करके उदास हो जाते हैं। जी हाँ, उसकी नौकरी लग गई, उसका घर बन गया, उसने बड़ी गाड़ी ले ली, उसकी जिंदगी खुशहाल है, वो देखो कितना मस्त है, वगैरह वगैरह। लेकिन कौन अंदर से कितना लड़ रहा है, किसने कितना स्ट्रगल किया है, कौन सफल होने से पहले कितनी बार फेल हुआ है, ये हम नहीं जानते। अगर आपकी ग्रोथ धीमी है तो ये मतलब थोड़ी हुआ कि आप पीछे रह गए। ये आपकी जर्नी है, आपका सफर है, और यहाँ पर वो खरगोश और कछुए की रेस वाली कहानी याद आती है कि जिंदगी हमेशा दौड़ने वालों की नहीं होती। जी हाँ, उस रेस में जो कछुआ था वो बड़ी धीमी धीमी चाल चल रहा था, लेकिन खरगोश जो है वो छलांगे लगाता हुआ आगे निकल गया, और कछुए ने बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं ली, इस बात का तनाव नहीं लिया कि मैं पीछे रह गया हूँ। वो अपनी लगातार स्पीड से, अपनी जो चाल थी उससे चलता रहा। और यही हमारी जिंदगी में होता है कि कुछ लोग धीरे चलते हैं, बहुत धीरे, बिल्कुल कछुए की चाल। लेकिन दोस्तों मजेदार बात यह है कि धीरे चलने वाला इंसान अक्सर बीच रास्ते से लौटता नहीं है, वो थकता है, रुकता है और सोचता है, और फिर से चल पड़ता है। और फिर कई बार लाइफ में फास्ट होने से ज्यादा जरूरी होता है हमारा लगातार चलते रहना। तो अगर आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन परिणाम नहीं आ रहे, तो अपने आप को डाउट मत कीजिए, क्योंकि पेड़ भी एक दिन में नहीं उगते हैं। सब कुछ एकदम से परफेक्ट नहीं होगा, पर धीरे धीरे ज़रूर होगा। तो हमें करना क्या है, हमें बस वक्त और ज़िंदगी पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखना है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं, और धीरे धीरे ज़िंदगी संभलती भी है, धीरे धीरे चीज़ें बनती है। और अक्सर जो चीज़ें धीरे धीरे बनती है, जिन चीज़ों को, जिन सफलताओं को बनने में वक्त लगता है ना, वो ज़्यादा देर तक टिकती है। और दोस्तों जब भी आप कभी किसी मुश्किल फेज़ में हो, जीवन की किसी उलझन में उलझे हों, तो बस इतना याद रखिएगा कि कभी कभी सिर्फ सर्वाइव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बस इतना याद रखें कि धीरे चलने वाले लोग हारते नहीं हैं, उनकी मंजिल बस थोड़ी सी देर से आती है।

जी हाँ, अपनी मंजिल को ढूंढते ढूंढते कभी कभी हम लोग अक्सर लापता हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, जब हम तलाश रहे होते हैं कि हमारे सपने कब पूरे होंगे, हमारी जो मंजिल है वो कब हमें मिलेगी। और दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना कि जिंदगी का जो सफर है ना, बड़ा उतार चढ़ाव वाला होता है। और जैसा कि अभी हमने बात की थी कि किसी और से हमें अपने सफर को, अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हम सभी जिंदगी में कहीं ना कहीं लेट चल रहे हैं। किसी का करियर लेट बनता है, किसी की लव लाइफ बिगड़ी हुई है, किसी के सपने हैं जो अधूरे हैं, बड़ी कोशिश करने के बाद भी वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिंदगी कहते हैं ना कि हमें हर रोज एक नया मौका देती है, एक नई सुबह के रूप में। और हर सुबह जो है ना, वो नई नहीं होती है सिर्फ, वो हमारे लिए कुछ हीलिंग भी लेकर के आती है। कि जब कल की बातें दिल पर भारी होती है ना, तो सुबह आते आते उनका वजन थोड़ा सा हल्का लगने लग जाता है। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बात है कि जो हमारी खुशियां होती है ना, वो कभी कभी छोटी छोटी चीजों से भी हमें मिल जाती है। जैसे कि कई बार गर्म चाय और पसंदीदा गाना भी काफी होता है। तो बस इसीलिए जिंदगी को बड़ी उलझनों में जब आप उलझ जाए ना, तो ऐसा ना सोचें कि ये वक्त जो है कब गुजरेगा या कब तक हम इस वक्त में फंसे रहेंगे, बल्कि ये सोचें कि जब ये वक्त गुजरेगा तो कोई बहुत ही खूबसूरत, कोई बहुत ही प्यारी सी चीज

आपका रेडियो धड़क रहा है एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज पर, और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार कोटा। और श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य पुस्तकालयाध्यक्ष पद के प्रथम चरण के इंटरव्यू 1 जून से शुरू होंगे। इस राउंड के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं और साक्षात्कार का ये चरण 12 जून तक चलेगा। और जो भी अभ्यर्थी हैं वो आयोग की वेबसाइट पर जो लिंक है उसमें अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपलोड करके साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हर रोज़ हम बात करते हैं उम्मीदों की, और इस वक्त जो भी कोई ये प्रोग्राम सुन रहा है, ये उन सब के मन की बात है। दोस्तों, बचपन में हमें लगता था कि बस जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और फिर मज़े ही मज़े, और अब बड़े होकर लगता है कि काश वो बचपन वापस मिल जाए। ना कोई करियर की टेंशन थी, ना कोई नौकरी की चिंता थी, ना ईएमआई का लोड और ना ही फ्यूचर का स्ट्रेस। याद है वो दिन जब चोट भी लग जाती थी अगर तो मम्मी की फूंक मारकर उसे ठीक कर देती थी, और अब पचासों टेंशन हम दिमाग में लिए घूमते रहते हैं और किसी को पता तक नहीं लगता। लेकिन जो भी हो, इंसान बड़ा कमाल होता है। चाहे जो हो जाए, टूट कर भी अगले दिन हम उठ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर संभालते हैं, लोगों को हंसाते हैं और एक उम्मीद लिए आगे बढ़ते रहते हैं कि वक्त आएगा, एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं आपको भी इनमें से कुछ महसूस होता है, तो अच्छी बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में इन मुश्किलों से लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेकर के चल रहे हैं और होठों पर एक मुस्कान है। और हर इंसान के पास ना हम में से सुनाने के लिए बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पर वो बिखरे भी हैं और संभले भी हैं। तो बस जिनसे भी आप मिलें, मुस्कुरा कर मिलें, प्यार से मिलें, क्योंकि क्या पता सामने वाला बस एक अच्छी बात सुनने के लिए ही इंतजार कर रहा हो। और जब भी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम तनाव में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, तो हमारा जो सबसे अच्छा साथी होता है वो होता है म्यूजिक। जी हाँ, कहते हैं ना कि म्यूजिक थेरेपी होती है। ये हमारे मूड को, हमारी फीलिंग्स को ऐसे समझता है जैसे किसी गीतकार ने हमारा ही हाल कह दिया हो। कभी खुशी में, कभी उदासी में, कभी मौज में, तो कभी नाराजगी में। ये जो गाने होते हैं ना, ये पुराने दोस्तों जैसे होते हैं। जब सुनो, जब भी उनसे मिलो, तो ऐसा लगता है कि वो पुराने एहसास जिंदा हो गए हैं। और रेडियो, रेडियो तो अलग ही प्यार है। यहाँ चेहरा नहीं होता, यहाँ सिर्फ आवाज़ होती है और कनेक्शन सीधे दिल तक पहुँचता है। कई लोग सफ़र में रेडियो सुनते हैं, कुछ लोग काम करते हुए, और कुछ लोग इसलिए भी सुनते हैं कि घर में आवाज़ बनी रहे, घर में हलचल बनी रहे। मतलब रेडियो कभी भी इंसान को अकेला महसूस नहीं होने देता। और रेडियो सुनने के कितने सारे फायदे भी हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें जानकारियाँ मिलती है, सूचनाएँ मिलती है, हमारा अकेलापन दूर होता है, ऐसा लगता है कि कोई साथ बैठकर बात कर रहा हो। मूड फ्रेश हो जाता है, हल्का तनाव उड़ जाता है, और काम करते वक्त जो समय है वो भी कट जाता है। रेडियो सुनने का ये भी फायदा है कि बिना किसी एफर्ट

के आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, माइंड रिलैक्स होता है और एक इमोशनल कनेक्शन भी बनता है, क्योंकि कुछ आवाज़ें जो होती हैं ना वो हमारी आदत बन जाती है, हमारी साथी बन जाती है और हम उन बातों से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में रिलेट भी कर पाते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ भी होता है। तो एक दोस्त की तरह रेडियो हमारा जो है साथ निभाता है, हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग जानकारियों के साथ में, मनोरंजन के साथ में। तो इसीलिए रेडियो जो है ना वो हमारा सच्चा दोस्त कहलाता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सुबह के 7:30 समय है फिल्म संगीत का, और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

और दोस्तों गाने हमें ये भी सिखाते हैं कि खुद से इश्क कैसे किया जाता है। और इन्हीं बातों के साथ अब प्रोग्राम के आखिरी मोड़ पर, आखिरी सफर पर हम आ गए हैं। तो बस आज का जो सफर था प्रोग्राम नमस्कार कोटा का, वो यहीं तक। और चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीणा ने, प्रस्तुति थी राजेश महावर की। और इसी के साथ प्रोग्राम नमस्कार कोटा से इजाजत दीजिए निशा को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी कोटा बूंदी का।

और श्रोताओं, ये था फिल्म जंगली का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है फिल्म संगीत की आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत में आज सुबह 8:15 पर कार्यक्रम का विषय होगा प्रसूति फिस्टूला और प्रसव काल की समस्याएं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगी डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी। तो जो भी श्रोता इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर है 2941142 और कोटा शहर का स्टडी कोड है 0744। तो सुनना न भूलिएगा आज सुबह 8:15 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। और श्रोताओं, फिल्म संगीत में अब आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ। आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं, फिल्म संगीत जारी है और आइए अब सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है घर, गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत है RD बर्मन का।

और श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म हमराही से। आवाजें थी मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की, गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और श्रोताओं, अगले गीत के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज सुबह 8:15 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत का विषय रहेगा, प्रसूति, फिस्टुला और प्रसव काल की समस्याएं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगी डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी। तो इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है या कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में, और प्रसारण के दौरान आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर है 2941142 और कोटा शहर का एसटीडी कोड है 0744। तो सुनना न भूलिएगा आज सुबह 8:15 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत में अगला गीत। मुकेश की आवाज में ये गीत है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब फिल्म संगीत का आखिरी गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम खेल खेल में, गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत है RD बर्मन का।

0: और श्रोताओं, फिल्म खेल खेल में के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। अब श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
6: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
7: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे

0: त्यांची परकी मित्रता आपसे सम्मान साझा मूल्य विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोड ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
4: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे।

0: एक रिपोर्ट।
1: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की चार दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान

0: सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा। फोन नंबर 9351412449।
2: अब लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी। विश्व की सबसे आधुनिकतम अमेरिकन सिग्नेचर फेको मशीन द्वारा बिना इंजेक्शन, बिना टांके और बिना पट्टी बांधे मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण।
1: आंख के पर्दे की सभी बीमारियों की जांच एवं ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध। लेसिक लेजर सर्जरी, फेकिंग लेंस इम्प्लांटेशन, डिजिटल फंडस कैमरा से आंखों के पर्दों की जांच एवं एंजियोग्राफी, जापानी ग्रिल लेजर मशीन से मधुमेह रोगियों के पर्दे की सिकाई,
2: जटिल भेंगापन एवं कालापानी जांच और ऑपरेशन सुविधा।
1: सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा।
0: बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे सभी श्रोताओं का इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी सेहत। श्रोताओं, हर शनिवार इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़ते हैं एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। श्रोताओं, कहते हैं ना कि माँ बनना एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन कई बार प्रसव के दौरान कुछ ऐसी समस्याएं भी आती है जिनके बारे में महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती। कई बार शर्म, डर और जानकारी की कमी के कारण कई महिलाएं दर्द सहती रहती है। तो आज एक ऐसे ही विषय पर हम बात करेंगे और श्रोताओं, प्रसूति फिस्टुला के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आधारित आज का ये विषय आपकी सेहत कार्यक्रम में आप श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो है प्रसूति फिस्टुला और प्रसव काल की समस्याएं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी और मैं हूं आपके साथ निशा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अगर आप भी भाग लेना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपका जो आप पूछना चाहते हैं या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए स्टूडियो का नंबर है 2941142 और कोटा शहर का एसटीडी कोड है 0744। कार्यक्रम का विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कार्यक्रम आपकी सेहत में आज का विषय है प्रसूति फिस्टुला और प्रसव काल की समस्याएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो मैम, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई बार झिझक की वजह से, शर्म की वजह से महिलाएं खुलकर सामने नहीं आती, अपनी समस्या नहीं बता पाती है। तो आज कोशिश हमारी यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोगों तक पहुंचा पाए और जो विषय है उसी से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो यही आपसे करना चाहूंगी कि आसान भाषा में अगर हम समझें तो प्रसूति फिस्टुला क्या है?
3: देखिए, फिस्टुला प्रसूति के दौरान बनने वाला फिस्टुला, और फिस्टुला क्या होता है, दो अंग के बीच में एक अनकॉमन कनेक्शन आ जाता है जो प्रकृति ने नहीं दिया है, उस टाइप का कनेक्शन। तो प्रसूति के दौरान बच्चेदानी और बच्चेदानी के बाद जो होती है योनि जिसमें से बच्चा निकलता है, उस पे अत्यधिक प्रेशर की वजह से उसके आसपास के अंगों में कनेक्शन बन जाता है, जैसे कि मूत्राशय और रेक्टम यानी मलद्वार। तो ये दो तरह के फिस्टुलास बहुत कॉमन है, उसको हम अंग्रेजी भाषा में, हमारी भाषा में वेसाइको वजाइनल फिस्टुला, जिसमें मूत्राशय से योनि में कनेक्शन बन जाता है, एक नली बन जाती है आर्टिफिशियल किसी वजह से, और एक रेक्टम यानी लैट्रिन जहाँ से आती है मल द्वार की, उसके पहले से और वहाँ से योनि में एक अलग सामान्य नली बन जाती है, उसको कहते हैं फिस्टुला।
0: जी, तो मैम ये जो समस्या है ये किस तरह से महिलाओं में विकसित होती है?
3: ये प्रसूति के दौरान अगर हम बात करें तो प्रसूति के दौरान अगर अत्यधिक लंबे समय तक प्रसूति चलती रहे यानी लेबर पेन्स चलते रहें, बच्चा वहीं पे अटका रहे, यानी अगर बच्चे की साइज ज्यादा है, बच्चा अनकॉमन पोजीशन में है, और या फिर पेल्विस यानी हड्डियों की साइज ऐसी है कि बच्चा नहीं निकल सकता उस रास्ते से, तो वहां पे बहुत ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी के प्रयास की वजह से कई समय तक प्रेशर बना रहता है, उस प्रेशर की वजह से ये जो फिस्टुला है ये डेवलप हो जाता है। ये क्यों डेवलप हो जाता है, वहां पे प्रेशर की वजह से वहां की ब्लड सप्लाई जो होती है वो खत्म हो जाती है, इस वजह से वहां का टिश्यू नेक्रोस

0: हो जाता है, यानी अगर किसी भी ब्लड ऑर्गन को, हमारे किसी भी अंग को अगर ब्लड सप्लाई यानी खून की मात्रा नहीं मिलेगी तो कुछ देर में वो काम करना बंद कर देगा और वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगा। उस वजह से वो फिर नेक्रोस होकर वहां से स्लफ ऑफ हो जाता है, वहां से जो नॉर्मल टिश्यू जो भगवान ने दिया हुआ है वो टिश्यू खत्म हो जाता है और एक अलग कनेक्शन वहां पे दोनों के बीच में बन जाता है। अत्यधिक प्रेशर की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं
1: जी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्रसूति फिस्टुला और प्रसव काल की समस्याओं पर, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी और हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। कौन बोल रहे हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी सर, शिमला से, बड़ी दूर से सर कॉल किया है आपने।
2: जी जी जी जी
1: जी सर, प्रश्न पूछे अपना।
2: तो सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: जैसे कि अभी मैं सुन रहा था कि कई महिलाएं जो है शर्म महसूस करती है, तो मेरा एक सवाल ये है, ऐसे महिला को क्या संदेश देना चाहते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है, कई बार महिला काम पे बिजी होती है, कई बार अपना ध्यान रखती, खान पान में ध्यान रखती, तो ऐसे महिला को किस तरह से जो है काम करना चाहिए अपने सेहत के लिए? ये मेरे दो सवाल है।
0: सेहत का ध्यान हम शुरू से ही प्रसूति जो महिलाएं प्रेगनेंसी में आती हैं उनको कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने पोषण का ध्यान रखें। पेशेंट को कभी भी एनीमिया यानी रक्त विकार जो की वजह से जो खून की कमी है वो नहीं होना चाहिए, कुपोषण का शिकार नहीं हो। शुरू से उनको अच्छा खान पान के लिए हम प्रेरित करते रहें, समय समय पर डॉक्टर को दिखाएं, और अगर डिलीवरी के दौरान हम हॉस्पिटल ले जाएं तो अगर डॉक्टर कहें कि ये प्रसव नॉर्मल संभव नहीं है तो उसका अत्यधिक प्रयास न करके सी सेक्शन की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये अत्यधिक बहुत ज्यादा समय तक नॉर्मल का प्रयास करने पर, और अगर जैसे जो दूर जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है या ऐसी जगह पे जहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे वो कोशिश करते रहते हैं, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में कहते हैं हम कि भाई ये फंस गया है अब बच्चा, तब पहुँचता है। तो उसके बाद
2: एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि कई बार सर्दी में हमारे यहाँ बर्फबारी होती है, अगर महिला को
0: दोबारा बताएं, सर्दी में,
2: जैसे सर्दी में हमारे बर्फबारी होती है
0: जी,
2: में
0: जी जी,
2: तो ऐसे में अगर महिला को इमरजेंसी पड़ती है तो ऐसे में हमें जैसे दूर के पहाड़ी क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अस्पताल तो जा नहीं सकते, कई बार बर्फबारी से रोड रास्ता बंद होता है, तो ऐसे तो अगर महिला को इमरजेंसी पड़ती है तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए?
0: इसमें तो साहब आपको स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना ही होगा, आपको पहले से ही ये जानकारी रखनी होगी कि हमारे आसपास कौन सा चिकित्सा केंद्र है और जहां पे प्रसव सुविधा अच्छी उपलब्ध है, आप नियर बाय वहां पे प्रसव काल के दौरान उनसे पहले से संपर्क बना के रखें, एम्बुलेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, समय से पहले आप हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं ताकि ऐसी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, क्योंकि ये पूर्णतया प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम सचेत रहें सतर्क रहें तो ये कभी नहीं होगा, लेकिन अगर हम नहीं सतर्क रहेंगे और इसको बढ़ाते रहेंगे तो ये जरूर हो सकता है।
2: जी जी जी जी जी, धन्यवाद जानकारी
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फोन करने के लिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्रसूति फिस्टुला और प्रसव काल की समस्याओं पर, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी। मैम, अभी जैसा कि इन्होंने सर ने जिक्र किया कॉल पर कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली का प्रेशर होता है या फैमिली की बहुत इच्छा ऐसी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन वो नहीं करवाना चाहते हैं, तो इसमें मैम क्या रिस्क हो सकते हैं?
0: यही जो मैंने बताया कि हम नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास तो करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट के पास पहुंचोगे तो वो पहले से ही आपको सचेत कर देगा कि बच्चे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है या पेल्विस अच्छी नहीं है। उनको अपने जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोगों को आभास हो जाता है कि बच्चे और जो निकलने वाला रास्ता है वो अनप्रोपोर्शनेट है, उसको हम कहते हैं सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यानी बच्चे का सिर और या फिर जो पेल्विस है उन दोनों में से किसी का डिस्प्रोपोर्शन है, तो बच्चा उस रास्ते से नहीं निकल पाएगा। अगर हम लाख प्रयास कर लें तो भी बच्चा वहां पे बिल्कुल फिक्स फंस जाता है, उससे आसपास जो योनि पे में तो फंस गया, तो ऊपर और नीचे जो ऊपर की तरफ है हमारा मूत्राशय और मूत्र का रास्ता और नीचे की तरफ है रेक्टम, उस पे बहुत देर तक प्रेशर पड़ता रहता है। ये नहीं है कि आधे घंटे तक प्रेशर पड़ा और हो गया, ये करीब रूरल एरिया से जो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पहले से ही बहुत प्रयास कर चुके होते हैं, बहुत सारी निकालने की कोशिश दाइयां वगैरह कर चुकी होती हैं, या फिर नॉर्मल भी, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी एक भगवान का दिया हुआ एक वरदान है स्त्री को, तो अपने आप दर्द आते हैं, लेकिन अगर वो नहीं फंसता है तो

0: निकल ही जाता है, लेकिन अगर फंस गया है तो उसको समय पे सी सेक्शन द्वारा निकाल दिया जाए। और इस बात की जिद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हमें तो नॉर्मल ही कराना है, क्योंकि फिर उन्हीं लोगों में ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो मैम प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे इस तरह की जो समस्या होती, कौन सी महिलाएं हैं जिनमें ज्यादा चांसेस होते हैं?
0: पहले तो जो कद में छोटी होती हैं,
1: जी
0: है ना, तो कद में जो छोटी होती है उनकी पेल्विक बोन्स भी छोटी होती हैं, या फिर जो डायबिटीज वाली पेशेंट्स होते हैं उनके बच्चे की साइज ज्यादा होती है हमेशा।

0: हो जाता है,
1: जी
0: ऐसे लोगों में ये ज्यादा रहती है।
1: बिल्कुल। और मैम अगर हम ये बात करें कि
0: किसी भी वजह से पहले कोई एक्सीडेंट हो रखा हो और उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है और नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, और या फिर बच्चे का क्रेनियम जो है, कभी कभी हाइड्रोकेफेलस टाइप के बच्चे होते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है।
1: बिल्कुल। इसके अलावा मैम जैसे एज फैक्टर कितना इसमें आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है बिफोर 30 वो थोड़ी सेफ मानी जाती है, आफ्टर 30 जो है कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाती है, तो एज फैक्टर इसमें कितना रोल प्ले करता है?
0: एज फैक्टर इसमें ये कॉम्प्लिकेशन में ये रोल पैदा करता है कि हम अर्ली जितनी स्टेज में होती हैं हमारी मॉड्यूलेशन, हड्डियों का मॉड्यूलेशन जल्दी और आसान तरीके से हो सकता है। अगर ज्यादा एज करते हैं तो हमारे सब जो बोन्स होती हैं उनमें फाइब्रोसिस ज्यादा हो जाता है और उनमें लचीलापन कम हो जाता है, इस वजह से बोन्स की लचीलापन कम होने की वजह से ये सामान्य प्रसव कम हो पाता है। बस यही वजह है और तो कोई खास वजह लॉन्ग एज मतलब ज्यादा बड़े उसमें होता नहीं है। अगर हम सजग रहें तो ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन है।
1: जी। और मैम डिलीवरी के टाइम की अगर हम बात करें तो लेबर पेन जो होता है, कई महिलाओं को बड़े लंबे समय तक होता है लेबर पेन, तो उससे मैम क्या फिर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं?
0: लंबे समय तक हो रहा है या कम समय तक हो रहा है ये हम लोग डिसाइड करते हैं पहले तो, कि भाई बहुत लंबा हो चुका है अब अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो इसको हम किस किस तरीके से बचाएं। ज्यादातर लंबे समय तक कॉम्प्लिकेशन होने से एक तो ये प्रसूति फिस्टुला तो बता ही चुके हैं हम, डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चले जाए तो होता है। उसके अलावा लंबे समय तक होने की वजह से कभी कभी यूट्रस रप्चर भी हो जाता है। हम कोश बच्चेदानी को प्रेशर लगाए जा रहे हैं लेकिन बच्चेदानी से नीचे से नहीं निकल रहा है तो ऊपर से बच्चेदानी फट जाती है, उसकी वजह से महिला शॉक में चली जाती है, पेट में खून ही खून जमा हो जाता है और बच्चे को भी मतलब कभी कभी स्टिल बर्थ भी हो जाता है और कभी कभी पूरा आईयूडी यानी बच्चे बच्चेदानी के अंदर से बाहर निकल जाता है और वो नॉर्मल जगह नहीं होने की वजह से खत्म हो जाता है। तीसरा, अगर प्रोलॉन्ग लेबर चले, लंबे समय तक लेबर में रहे पेशेंट, तो उसके बाद पीपीएच यानी प्रसूति के बाद होने वाला ब्लड लॉस भी ज्यादा होता है। कभी कभी ये होता है कि वो जो बच्चेदानी बहुत देर से प्रेशर लगा रही है वो वापस सामान्य स्थिति में आने में और उसमें से ब्लड सप्लाई खत्म होने में समय लगता है, तो वो उस वजह से पीपीएच हो जाता है और ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अराइज हो जाते हैं।
1: जी हेलो,
2: नमस्कार मैडम।
1: जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका।
0: नमस्कार सर।
2: वैसे एक मेरा स्त्रियों से संबंधित एक क्वेश्चन है, स्त्रियां नहीं पूछ रही है, मैं स्त्रियों के लिए ही पूछ रहा हूँ। मतलब जो यूट्रस में गठान जो हो जाती है वो दो प्रकार की, जैसे एक बाल वाली होती है एक दूसरी वाली होती है, तो किस कारण से होती है?
0: यूट्रस में बाल वाली गठान नहीं होती है सर, अंडेदानी में एक बाल वाली गठान होती है, है ना, तो बाल वाली गठान तो अंडेदानी में होती है, बच्चेदानी में ज्यादातर फाइब्रॉइड होता है, फाइब्रोसिस की वजह से हो जाता है। कारण बहुत सारे हैं और इसका निवारण हम किसी तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन समय पे पता लग जाए तो इसकी सर्जरी कराना उचित होता है।
2: एक दो कारण आप बता दें तो उसका महिलाएं ध्यान रखे।
0: सर समय पे दिखाना और समय पे सोनोग्राफी के द्वारा इलाज करवाना और उसके बाद अगर वो प्रिवेंट मतलब उसको हम सही समय पर पता लगा लें वो बच्चेदानी के अंदर है या अंडेदानी के अंदर है और उस हिसाब से आप विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो अगर वो दवाई द्वारा निकाली जा सकती है तो दवाई द्वारा उसको डिसोल्यूशन किया जा सकता है उसका, तो वो कर सकते हैं।
2: तो आपने निदान बता दिया मैडम, लेकिन इसके कारण नहीं बताए।
0: कारण सर प्रिवेंटेबल है ही नहीं।
2: अच्छा
0: जी, आप कितना भी कुछ भी कर लें इसके कोई कारणों का कोई विशेष पता नहीं लग पाया है, अगर ये गिठान किसी में बनने की टेंडेंसी होती है तो वो होती ही है, उसको किसी भी वजह से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता सर।
1: तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सजग रहना, हमारा अलर्ट रहना ज्यादा जरूरी है। तो मैम जब भी कोई शरीर में बीमारी होती है, किसी भी किस्म की अगर तकलीफ हमें होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण हमें नजर आने लगते हैं, तो अगर हम प्रसूति फिस्टुला की बात करें तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम नोटिस कर सकते हैं कि ये लक्षण प्रसूति फिस्टुला के हैं?
0: एक तो प्रसूति हो गई अगर हमने किसी भी तरीके से प्रसूति फिस्टुला हो गया तो मरीज को असामान्य तरीके से योनि में से तरल पदार्थ रिसाव होता ही रहेगा
1: जी,

0: अगर वेसाइको वेजाइनल फिस्टूला है, मतलब मूत्राशय द्वार, और इसमें तीन तरह के फिस्टूलाज बन सकते हैं। वेसाइको वेजाइनल मोस्ट कॉमन होता है, उसमें पेशाब योनी से निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि जो स्फिंक्टर है उससे पहले से ही एक पेशाब के रास्ते और योनी में एक अलग कनेक्शन, असामान्य कनेक्शन बन गया है, तो असामान्य वो तरल पदार्थ जाता ही रहता है
1: जी।
0: तो उसकी वजह से वहाँ से तरल पदार्थ जाता रहेगा, अजीब सी स्मेल होती रहेगी अगर वो वाला फिस्टूला बना है तो। दूसरा कॉमन फिस्टूला होता है रेक्टोवजाइनल फिस्टूला, उसमें मल द्वार से योनि की तरफ एक फिस्टूला बन जाता है, तो मल का त्याग, वो जब प्रेशर लगाती है तो वहां से भी मल द्वार, मतलब वजाइना में वो मल आने लग जाता है, तो एक अजीब सी दुर्गंध रहती है, मरीज मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि हर समय गीलापन रहता है, इन्फेक्शन रहता है, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आएगी, तो वो सामाजिक तौर पे भी अपने आप को कटा कटा महसूस कर सकता है। ये सब है। और एक असामान्य फिस्टूला बनता है बच्चेदानी से, बच्चेदानी और मूत्राशय के बीच में। उसमें क्या होता है कि जब मूत्राशय से बच्चेदानी में चला गया पेशाब, और अब पेशाब योनि से निकल रहा है, लेकिन जो हमारी सर्विक्स है उसको कंट्रोल करके निकाल रही है, या फिर उल्टा कि जब हमारी ब्लीडिंग का समय होता है, जब हम मेंसेस में होते हैं तो वो ब्लीडिंग मूत्राशय में पहुंच जाती है, और हमको पेशाब में रक्त का महसूस होना, पेशाब करते वक्त दर्द का महसूस होना, जलन महसूस होना, ये सब फील होता है।
1: ओके।
2: नजर धुंधली हो या नंबर हाई, चश्मा हटाना हो या मोतियाबिंद, सुवी आई हॉस्पिटल पर आपको मिलेगा आंखों की समस्या का हर इलाज।
3: अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए ट्रेन डॉक्टर्स आप कोटा में, एडवांस मशीन्स के साथ आंखों की हर समस्या की जांच और उपचार, लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी, और फेकिक लेंस प्रत्यारोपण से मोटे चश्मे से छुटकारा।
2: विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा कैटरिक सर्जरी, रेटिना केयर और कॉर्निया उपचार।
3: सुवी आई हॉस्पिटल एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
3: फोन नंबर 9351412449।
1: और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्रसूति फिस्टूला और प्रसव काल की समस्याएं विषय पर, और इस विषय पर जानकारी दे रही है डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी। तो इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी से। स्टूडियो की लाइन्स खुली हैं, नंबर आपको बता देते हैं, नंबर है 2941142 और कोटा शहर का एसटीडी कोड है 0744। हेलो।
4: हाँ नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, स्वागत है सर, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं चित्रलाल मरुड़ बोल रहा हूँ, ग्राम पाला जिला बारा से।
1: जी सर, प्रश्न पूछें।
4: हमारा एक रिश्तेदार है जिनके 15 साल के बच्चे बजे हुए, 15 साल तक इलाज कराया, जांच कराया, सब कराया, फिर 15 साल बाद उन्होंने दूर शादी कर ली, तो दूर शादी करते एक साल बाद बच्चा हुआ, लेकिन उस पहले वाले के हुआ, नई शादी में नहीं हुई, पहले वाले वही क्या सही हो गई, इसको क्या माने अपन, कोई स्वास्थ्य संबंधी फैक्टर है या कोई संयोग है?
0: हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि मतलब जो पुरुष था उसने दूसरी शादी करी?
4: हाँ उसने दूसरी शादी कर ली।
0: तो बच्चा किसके हुआ? नई जो
4: नई के नहीं हुआ, वो नई आते एक साल बाद उसके हुआ पुरानी के।
0: उसको किससे हुआ?
4: उसे हुआ, उसी पति से।
0: अच्छा, 15 साल से नहीं हो रहा था और फिर जैसे ही शादी करी वैसे ही हो गया। तो इसे भगवान का चमत्कार ही समझे।
1: जी शीतललाल जी, ये विषय आज कार्यक्रम में नहीं है, कार्यक्रम में जो विषय है वो है प्रसूति फिस्टूला और प्रसव काल की समस्या है, तो इससे जुड़ा सर कोई प्रश्न है आपका? जी जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। तो मैम, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 3 टाइप्स ऑफ फिस्टूला हैं और
0: 4 टाइप्स ऑफ फिस्टूला है मेनली। हाँ, मेनली 2 टाइप्स में कन्वर्टेड रहता है, मूत्राशय से योनि का, फिर मूत्राशय से बच्चेदानी का, उसके बाद जो हमारा यूरिथ्रा होता है यूरेटर, उससे योनि में बन जाता है, और मल द्वार से योनि में बन जाता है।
1: जी, तो मैम आपने जैसा कि बताया कि रिसाव होता है, वहां से नमी बनी रहती है, तो मैम ये जो इन्फेक्शन है इसके सीवियर होने के कितने चांसेस होते हैं अगर किसी महिला को इस तरह की समस्या है तो? और टाइमली अगर वो ध्यान नहीं देती हैं इस पर?
0: नहीं, उसमें टाइमली उनको पता लग ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि पेशाब तो लगातार बनता है, 24 घंटे बनता है,

0: और पेशाब हमारे जो मूत्राशय में एक स्फिंक्टर होता है उसके द्वारा कंट्रोल्ड रहता है
1: जी।
0: लेकिन अगर ये फिस्टूला बन गया है तो मूत्राशय में बनने वाला पेशाब लगातार योनि में रिसता रहेगा, योनि से बाहर आएगा। जैसे हम जो मेंसेस के टाइम पे हम को ब्लीडिंग को कंट्रोल मतलब बाहर नहीं निकले उसके लिए पैड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वैसे ही लोगों को डायपर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं
1: जी।
0: और कब तक डायपर्स इस्तेमाल करेंगे? अगर वो लगातार रिसाव है तो गीलापन बना रहेगा, उसमें दुर्गंध रहेगी, उसमें स्किन इरिटेटेड रहेगी क्योंकि हर समय गीलापन की वजह से, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ये सब भी होंगे। तो इसका तो उनको पता तो जल्दी ही पड़ जाता है। अगर वो अपनी समस्या की अनदेखी करते हैं तो उस समय वहाँ पे उनके कॉम्प्लिकेशंस और भी सीवियर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बैक्टीरियल इन्फेक्शन किडनी तक भी पहुँच सकते हैं
1: जी। तो साइड इफेक्ट इसके काफी सारे फिर हो सकते हैं।
0: हाँ
1: ओके। और मैम प्रसव काल की अगर हम बात करें तो कई महिलाओं में प्रसव के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो मैम ये अगर किसी केस में होता है तो फिर कितना सीरियस होता है ज्यादा ब्लीडिंग होना?
0: देखिए, ये सबसे मोस्ट कॉमन इंडिया में कारण है प्रसव काल के दौरान ब्लीडिंग होने की वजह से मृत्यु। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए हम सारे गायनेकोलॉजिस्ट और सरकार बहुत ज़्यादा प्रतिबद्धता हैं, और इसके लिए हम प्रसव काल के भी क्या प्रेगनेंसी से पहले ही कोशिश करते हैं कि महिलाओं को किसी भी तरह का एनीमिया नहीं हो। सबसे पहले तो एनीमिया को प्रिवेंट करना है। महिलाएं पहले से ही 5-5, 6-6 ग्राम हीमोग्लोबिन में आती हैं और अगर उनका प्रसव होता है और उन्हें सामान्य ब्लीडिंग भी होती है तो वो शॉक का शिकार हो सकती हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखेंगे, अगर समय पे आयरन की गोलियां, फॉलिक एसिड की गोलियां और ये जो समय का जो प्रेगनेंसी में अच्छा खान पान हमें बताया जाता है कि अच्छी फलदार सब्जियां और हरी सब्जियां जो भी हमारे जो जिसमें आयरन रिच डाइट है वो लें, तो एनीमिया से प्रिवेंशन के कारण से फिर पहली बात तो ये बचा जा सकता है। दूसरी बात, अगर प्रसव काल के दौरान फिर भी पीपीएच बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है। अगर वो अच्छे सेंटर पे है तो वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, कई तरह की मेडिसिन होती हैं जिससे हम समय पे बच सकते हैं
1: जी।
0: और भी सवाल
1: जी मैम? तो जैसा कि आपने कहा न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे किस तरह से महिलाएं अपना ध्यान रख सकती, खान पान किस तरह का होना चाहिए, क्या उन्हें खाना चाहिए और क्या चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए
0: प्रसव काल के दौरान? यानी प्रथम तिमाही में तो मरीज की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस रहती है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नौजिया वॉमिटिंग होती है, यानी हर समय उल्टी मिचली ऐसे
1: उनमें
0: बहुत ज्यादा, हाँ कुछ भी खाते हैं तो पलट जाता है। लेकिन जो भी महिलाएं पहले से प्रेग्नेंट होने के लिए मतलब अगर प्लान कर रही हैं, अगर उनमें इतनी सजगता है तो वो पहले से ही डॉक्टर को दिखाएं, अपना सीबीसी कराएं, हीमोग्लोबिन सही नहीं है तो उसको पहले से प्रिवेंट करें, अगर थायराइड लेवल सही नहीं है तो उसको प्रिवेंट करें, मतलब सही समय से थायराइड की गोलियां ले लें, शुगर लेवल उनका कैसा है, थायराइड शुगर उनका कैसा है, शुगर में अगर वो डायबिटिक हैं तो उसका भी पहले से ध्यान रखें, अगर उनका बीपी ज़्यादा है तो उसका समय पे ध्यान रखें। उसके अलावा खान पान में उनको सभी पदार्थ लेने चाहिए हमारी तरफ से, तो जो हम एक या दो चीज़ें अवॉइड करते हैं।
1: एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो जी मैम,
0: जो एक या दो चीज हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं वो शुरू में कहते हैं अत्यधिक पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाने के लिए बस। इसके अलावा हम कहते हैं कि आपको जो इच्छा हो वो खाएं, किसी चीज पे रोक टोक नहीं है। अत्यधिक जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है कि खाने से बाहर का इन्फेक्शन जाता है, जैसे कोलाइटिस हो जाएगी आपको, डायरिया वॉमिटिंग और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, अत्यधिक एसिडिटी रहेंगी तो उससे आप और भी अत्यधिक परेशान हो सकते हैं। तो घर का बना हुआ साफ शुद्ध खाना खाएं, अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करें, सब तरह के फल खाएं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी भी ना रहे और आपका सेहत भी अच्छी रहे। सब तरह के मिलेट्स भी हमको खाने चाहिए, गुड़ चना मूंगफली जो भी इजीली अवेलेबल चीज है, बहुत ज्यादा फैंसी खाने पे नहीं जाना है कि वो हमको बहुत ही महंगा खाना खाना है, एप्पल ही खाना है, अनार ही खाना है, ऐसा नहीं है। केला पता नहीं क्यों नहीं खाते लोग बाग, केला एक बहुत अच्छा फल है, सस्ता है और कहीं पे भी छील के खाया जा सकता है। तो जैसे ये केला एक बहुत अच्छा फल है, यहाँ पे मिथ है कि नहीं खाना, कई लोग दही नहीं खाने देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि दही नहीं खाने से बच्चा जम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गर्मियों में दही जिसको सूट करता है, नहीं सूट करता है वो अलग बात कि खांसी हो जाती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है दही खाने से, नहीं तो एक दही भी बहुत अच्छा पदार्थ है जिससे हमें कैल्शियम

0: भी अच्छा भरपूर मिलता है और हमारी आंतें भी बहुत अच्छी रहती है उसकी लैक्टोबैसिलस से। तो
1: बिल्कुल
0: ये कोई भी चीज़ें हमारी तरफ से रुकावट नहीं है, मरीज को जिस वक्त जो खाने की इच्छा हो। तो प्रसव काल के दौरान वैसे भी, यानी प्रेगनेंसी में, प्रसव काल तो अलग चीज़ हो गई, प्रेगनेंसी में वैसे भी मतलब ऐसे अलग ही टाइप की इच्छा होती है कि हमें यही खाना है, क्रेविंग्स होते हैं, तो वो क्रेविंग्स हमें पूरी करनी चाहिए और खाना चाहिए जो भी हमारी इच्छा हो, लेकिन वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तो सादा खाएं लेकिन हेल्दी खाएं।
0: बिल्कुल।
1: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।
2: मैं कह रहा हूँ कलकत्ता से।
1: जी सर बोले। सर आवाज बहुत कट कट के आ रही है आपकी।
2: हेलो।
1: हेलो जी सर,
0: हाँ बिल्कुल, मैंने अभी ही बताया कि प्रेगनेंसी में केला दही कहीं से भी नहीं खाएं, ऐसा कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, और ये बल्कि बहुत न्यूट्रिशियस है, रोज खिलाएं जिनको सूट करता है।
2: नहीं, ये लोग कहते हैं कि दही जम जाता है।
0: वही मिथ को तो हम तोड़ना चाह रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं और डॉक्टर क्या कहता है, उसमें डिफरेंस है। लोग कहते हैं कि प्रसव के बाद भी नमक ना खिलाएं, खटाई ना खिलाएं, हम सबको कह के भेजते हैं नमक खिलाएं, खटाई खिलाएं, रोटियां खिलाएं, सिर्फ दलिये पे ही नहीं रहे, पर अचार मिनिमम क्वांटिटी में खाना चाहिए वैसे भी, इन जनरल भी मना नहीं है अचार खाने के लिए,
1: बहुत ज्यादा नहीं खाना,
0: एसिडिटी हो जाती है।
1: जी,
0: पति तो सभी चीजों की वर्जित है,
2: जैसे बड़े दाग खिलाते हैं तो काम करते हैं कितने काम?
0: बिल्कुल, हाँ हाँ, बड़े दाग बहुत सेहतमंद होते हैं।
2: और जैसे बादाम,
0: सब कुछ खिला सकते हैं आप, बादाम, काजू, दाग, अखरोट, इनका मिक्सचर बना के रखिए, नारियल, और ये सब खा सकते हैं।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। ऑलराइट, तो मैम ब्लड प्रेशर की भी अभी हमने बात करी, आजकल लाइफस्टाइल हमारी ऐसी है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दिक्कत बहुत कॉमन है, तो जिन महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है वो अपनी जो डिलीवरी है उसमें किस तरह से अपना ख्याल रखें या किस तरह की उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है डिलीवरी के दौरान?
0: देखिए, जैसे आपने पीपीएच कही, यानी प्रसव काल के बाद ब्लीडिंग की जो समस्या है वो बहुत मोस्ट कॉमन मॉर्टिलिटी है। सेकंड जो सबसे सीरियस समस्या है और प्रिवेंटेबल भी है वो है बीपी, ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट। अगर पहले से ही ब्लड प्रेशर है तो उसको ऐसी दवाइयों पर शिफ्ट करना पड़ता है कि जो प्रेगनेंसी में सेफ है, तो हम उसको उन दवाइयों पर शिफ्ट करके और समय समय पर बीपी लेते रहते हैं।
1: जी,
0: बीपी बढ़ने के साथ साथ ही ये पांचवे या छठे महीने पे, प्रेगनेंसी के दौरान या साढ़े पांच से छह महीने पे बीपी बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ना चालू होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अब इन महिलाओं को 15 दिन में दिखाएं, तो वो 15 दिन में दिखाने का चेकअप का मतलब यही होता है कि हम उसका बीपी भी लें, बच्चे की ग्रोथ भी हो रही है, वो हो रही है,
1: पूरा मॉनिटर उसे कर सकते,
0: वेट बढ़ रहा है क्या, अत्यधिक बाहों में ज्यादा सूजन तो नहीं है, एकदम से क्यों बीपी बढ़ा उसके कारण का पता लगा के, बीपी का मैनेजमेंट हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर बीपी बढ़ गया तो इसमें बहुत ज्यादा सीरियस समस्याएं हो जाती हैं, बच्चे को खून मिलना बंद हो जाता है, किसी तरह से श्रिंक हो जाती हैं वो वाली सारी, तो हमको कई सारी डॉपलर वाली जो सोनोग्राफी होती है उसको बार बार कराना पड़ता है किसी किसी को, उसको कई तरह की दवाइयां देनी पड़ती है, और कई बार इतना सीरियस मैटर हो जाता है कि बच्चा नहीं बढ़ रहा, किसी भी पूरे प्रयास के बाद भी बच्चा नहीं बढ़ रहा और बीपी अत्यधिक बढ़ रहा है, तो सबसे पहले महिला की जान को बचाने के लिए हमें तुरंत डिलीवरी करानी पड़ती है, भले ही वो प्री टर्म डिलीवरी ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें पहले माँ की सुरक्षा देखनी पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो बीपी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बच्चे की जो माँ है उसमें अत्यधिक बीपी की वजह से ताने आने लग जाते हैं, जो कहते हैं ना मतलब एकदम से तान, हम एक्लेम्शिया कहते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में, उसमें अजीब से झटके से आने लग जाते हैं, वो माथे की नस उसमें फट सकती है, एकदम से मरीज की मौत तक हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए समय पे बीपी का इलाज करना और समय पे डिलीवरी कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। कार्यक्रम में आज का विषय है प्रसूति फिस्टुला और प्रसव काल की समस्याएं, और इस विषय पर बातचीत कर रही हैं, जानकारी आपके हमारे साथ साझा कर रही हैं डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी। तो इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी से बात कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, स्टूडियो का नंबर है 2941142 और कोटा शहर का एसटीडी कोड वही है, जाना पहचाना 0744। तो मैम,
0: और बीपी में हम लास्ट के टाइम पे जैसे ही बीपी बढ़ने लगता है हम पेशेंट को कहते हैं कि बहुत ज्यादा घी और नमक कम कर दें
1: जी।
0: घी और नमक बीपी में एकदम खराब।

0: रहता है। हमारे जो कॉमन मिथ्स हैं उनमें ये भी होता है कि खूब सारा घी पिलाओ, दूध में घी डाल डाल के पिलाओ
1: बिल्कुल
0: तो नॉर्मल
1: बिल्कुल
0: डिलीवरी हो जाएगी,
1: हाँ
0: एकदम
1: जी
0: बच्चा फिसल के नीचे आ जाएगा। तो बच्चा फिसल के नीचे नहीं आता है लेकिन बीपी बहुत ज़्यादा शूट हो जाता है कभी कभी।
1: ओके और तो मैम जिस तरह से डिलीवरी वाली जब सिचुएशन होती है तो सी सेक्शन करना कब बहुत जरूरी हो जाता है, जब आपको लगे कि नॉर्मल डिलीवरी के अब चांसेस नहीं, किन महिलाओं में ज्यादा चांसेस होते हैं सी सेक्शन के?
0: जैसे सीपीडी जो शुरू से ही अपन ने बताया कि बच्चा और माँ की जो माँ की जो योनि का रास्ता है और बच्चा बड़ा है या योनि छोटी है तो जरूरी है। बच्चे की ऐसी पोजीशन है बच्चा उल्टा है या आड़ा है
1: जी
0: तो वो नॉर्मल प्रसव से नहीं किया जा सकता है। पहले से ही कोई ऑपरेशन हो रखा है तो उसमें ऑपरेशन में बच्चे के जो पहले के टाँके होते हैं वो खुलने का खतरा है अगर, तो उसमें करते हैं। अगर बच्चा घबरा रहा है ना, और बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, नहीं
1: जी
0: आने के सिर्फ दो ही कारण यही नहीं होते, कई बार बच्चे के आंवल नाल के आंटे दो या तीन हो जाते हैं तो
1: जी
0: बच्चा वहाँ फंस जाता है। बच्चा नीचे जैसे ही आने की कोशिश करता है।
1: एक कॉल ले लेते हैं। हेलो,
0: हाँ
1: हाँ
0: हेलो
2: नमस्ते मैडम
1: जी, नमस्ते, स्वागत है आपका।
2: जी। मैडम मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे महिलाओं को डिलीवरी कितनी उम्र तक हो सकती है और IVF कितनी उम्र तक किया जा सकता है?
0: 45 या 50 से पहले पहले तक आप IVF के लिए पहुंच जाएं। वैसे तो 35 के बाद जैसी समस्या हो जाती है तो आपको अपने अपने IVF कंसल्टेंट से मिल लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी अंडों की गुणवत्ता 35 से 40 के बीच में वो फिर भी निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हो जाती है तो हमें अंडे भी किसी और के लेने पड़ते हैं,
1: जी सर
0: डोनर एग्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि क्वालिटी आपके खुद के अंडों में उतनी अच्छी नहीं होती कि हम कंसीव कर सकें।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जैसे ये चिरंजीवी कार्ड में, हेलो
0: हाँ बोले
2: हेलो,
0: बोले
2: जैसे ये चिरंजीवी कार्ड ये होता है इसमें हो सकती है IVF?
0: नहीं, अभी तक ऐसे राजस्थान के अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है चिरंजीवी कार्ड में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम, सी सेक्शन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे।
0: नहीं, सी सेक्शन क्यों करना पड़ रहा
1: जी
0: है अपन उसके बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें कई सारे कारणों के बाद में हाँ मैंने ये बताया कि अगर आंवल नाल के आंटे दो से ज्यादा है, दो भी हो जाते हैं तो कभी कभी, और आंवल नाल छोटी हो तो बच्चा नीचे नहीं खिसक पाता है तो बच्चा हरा पानी छोड़ जाता है डिलीवरी के दौरान। हम जब जल्दी उसकी जो अचानक फूट जाती है, हमको कभी कभी आर्टिफिशियली उनको मेम्ब्रेन को रप्चर भी करना पड़ता है,
1: जी
0: उसमें अगर हरा पानी एकदम से आता है तो उसको इंडिकेट करता है कि बच्चा घबरा रहा है किसी भी वजह से। और अगर वो जो हरी हरे कलर का पानी है इसका मतलब बच्चे ने पॉटी कर दी है, मल द्वार उसका रिलैक्स हो गया है घबराने की
1: जी
0: वजह से, तो मल द्वार रिलैक्स होने की वजह से वो पॉटी जो मदर के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड होता है यानी जो पानी होता है उसमें घुल जाता है, फिर वो बच्चे की नाक में मुंह में इंटेस्टाइन में सब जगह जा सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे ही हमें पता पड़े वैसे ही हमको क्या कहते हैं सी सेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, अगर नॉर्मल आगे नहीं जल्दी हो पा रही है, अगर और ज्यादा समय लग रहा है तो।
1: जी बिल्कुल। तो मैम हम लेबर पेन की अगर हम बात करें तो जो दर्द होता है वो नॉर्मल डिलीवरी का संकेत होता है हमेशा या कोई और भी वजह हो सकती है पेन की?
0: कोई और वजह भी हो सकती है, इसीलिए अगर आपको 9वें महीने पे या किसी भी महीने पे अगर दर्द अत्यधिक हो रहा है तो आपको दिखाना चाहिए,
1: जी।
0: है ना,
1: और
0: क्योंकि समय से पहले भी दर्द हो जाते हैं, हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं 9 महीने पे ही होगा, अभी तो 6 महीने चल रहे हैं और हम समय पे नहीं दिखाएं, पेट दर्द हो रहा है पेट दर्द हो रहा है,
1: जी
0: समझ नहीं पाते हैं तो प्रीटर्म लेबर पेन्स भी हो जाते हैं।
1: ओके हेलो
3: गुड मॉर्निंग मैम,
1: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं सर?
3: मैं प्रांजल से बात कर रहा
1: हूँ। जी स्वागत है सर।
3: थैंक यू थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था, यूरिन प्रेगनेंसी या बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर या
0: आवाज नहीं आ रही
1: सर, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, थोड़ा सा
3: हेलो
1: तेज बोले। हाँ जी
3: अब आ रही है मैम?
1: हाँ हाँ अब आ रही है सर, बताएं।
3: मैम यूरिन प्रेगनेंसी ऐसे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं चाइल्ड को, तो ऐसे कौन से टेस्ट या फिर प्रिकॉशन लेने चाहिए पेरेंट को कि उनका न्यूबॉर्न बेबी बिल्कुल फिट हो और कोई बीमारी ना हो?
0: हाँ, इसके लिए जो हम प्रेगनेंसी जब होती है समय समय पे कई सारे टेस्ट कराते हैं। जैसे सबसे पहले 3 महीने पे NTNB स्कैन होता है, उसके साथ डबल मार्कर टेस्ट होता है। डबल मार्कर ये जेनेटिक जो परेशानियां बच्चों में हो चुकी हैं उसके लिए ही होता है। उसमें अगर हमें कोई सस्पिशियस फैक्टर्स आते हैं, यानी वो लो रिस्क के हाई रिस्क में कन्वर्ट हो जाते

0: शायद उसके बाद हमको जेनेटिक टेस्टिंग करानी पड़ती है। उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट से मिलके, जो जेनेटिक फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होता है, उससे मिलके एमनियोटिक फ्लूड लेना पड़ता है, या फिर कम समय पे कोरियोनिक विलस सैंपल लेना पड़ता है। वहाँ से हम बच्चे के क्रोमोसोम्स को निकालते हैं, कि मतलब वहाँ से जो भी हम उसकी बायोप्सी टाइप की कोई छोटी सी चीज़ होती है उसको निकालते हैं, और उसको निकाल के हम उसकी क्रोमोसोमल स्टडी करवाते हैं, और उसके अलावा हम उसकी और दूसरी जेनेटिक स्टडी भी करवाते हैं। उसके उससे हमको पता लग सकता है समय से ही कि ये बच्चा सही है या नहीं है।
1: मैम, इंडिया में ऐसे कौन से जो डिसऑर्डर है जो बहुत कॉमन है और जिनकी जांच करवानी ही चाहिए?
0: डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, जो हम आजकल बहुत ही कॉमनली सबको लिखते हैं कि कम से कम ये प्रिवेंट कर सकें।
2: जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो प्रसूति फिस्टुला का इलाज कैसे हम करते हैं? दवाइयों से ये पॉसिबल है या सर्जरी ही करनी पड़ती है?
0: देखिए, पहले तो ये पता लगाना पड़ता है कि फिस्टुला कहाँ से कहाँ का कनेक्शन बना है। उसके लिए डायग्नोस करने के लिए हमको फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा MRI, कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग, ये सब करवानी पड़ती है। अब उससे हमें ये पता पड़ेगा कि, और उसके भी अलावा हमें एंडोस्कोपी पे जाना पड़ता है। जैसे मूत्राशय की एंडोस्कोपी हम करेंगे तो सिस्टोस्कोपी इसको कहते हैं, या फिर रेक्टोस्कोपी कहते हैं। उससे पता लगता है कि कहाँ से कितने सेंटीमीटर का या कितने मिलीमीटर का ये फिस्टुला स्ट्रैक्ट बन गया है, और फिर इसके लिए हमको मोस्टली ही सर्जरी की तरफ ही बढ़ना पड़ता है। दवाइयों से ये प्रिवेंटेबल नहीं है। कभी कभी बहुत ही छोटा माइनर होता है तो कई लंबे समय तक कैथेटर लगा देते हैं, यानी मूत्राशय का जो हमारा नॉर्मल रास्ता है उस पर एक आर्टिफिशियल रास्ता उसका बन जाता है, तो मूत्राशय में पेशाब इकट्ठा नहीं होने देते और लगातार उसका रिसाव दूसरी तरफ से करते रहते हैं, तो वो जो दूसरा वाला जो अबनॉर्मल रास्ता बना है वो छोटा सा बना है, अगर बहुत ही माइनर रहे तो वो हील हो जाता है कुछ समय बाद एंटीबायोटिक्स और इन सब के साथ में, अदरवाइज सर्जरी पे ही जाना पड़ता है।
2: ओके, तो मैम पोस्ट सर्जरी जो है रिकवरी में कितना टाइम लगता है और क्या प्रिकॉशंस उस दौरान रखने होते हैं?
0: पोस्ट सर्जरी में कितना समय लगता है ये सबका अलग अलग है। कम से कम हमें 3 हफ्ते से 4 हफ्ते तो लग ही जाते हैं मूत्राशय से उसमें, क्योंकि नलचियां रखनी पड़ती है, और जब मूत्राशय और इस वाले रास्ते को हम जो भी सर्जरी से, फ्लैप से या जो भी सर्जरी से करते हैं, तो उसके बाद हमें उसको पूर्णतया ठीक होने में कम से कम 3 हफ्ते लग जाते हैं
2: जी।
0: कभी कभी हमें रीसर्जरी भी करनी पड़ती है। डब बहुत ज्यादा बड़ा है और एक बार की सर्जरी से नहीं बैठ पाया तो हमें एक बार वापस सिस्टोग्राम करा के देखना पड़ता है कि उसमें कहीं से कोई लीकेज है। अगर लीकेज नहीं है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमको दोबारा भी उसको करना पड़ता है
2: जी। और मैम
0: 3 हफ्ते लग जाते हैं कम से कम।
2: बिल्कुल। और अगर किसी महिला को ये फिस्टूला हुआ है, प्रसूति फिस्टूला, उसके बाद सेकंड डिलीवरी अगर वो करना चाहती हैं, सेकंड टाइम कंसीव करती हैं, तो वो कितना मैम सेफ होता है फिर?
0: प्रेगनेंसी सेफ ही है, बस आपको सीधे सी सेक्शन पे जाना है। हमें पहले ही पता है कि हमारे ये कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी के दौरान हुए हैं, तो डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है, टाइमली सी सेक्शन करा लेना है। ठीक है, कभी कभी सी सेक्शन में भी हो जाती हैं ये प्रॉब्लम्स, लेकिन सी सेक्शन में जब बहुत ज्यादा एडिशंस होते हैं तब होती है, नेचुरली नहीं होती
2: जी। श्रोताओ, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। कार्यक्रम में आज का विषय है प्रसूति फिस्टुला और प्रसव काल की समस्याएं, और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत कर रही हैं डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी। तो मैम सेफ डिलीवरी की अगर हम बात करें, कोई महिला जो प्रेग्नेंट है उन्हें पता है कि अगले महीने में या 15 दिन बाद 20 दिन बाद डिलीवरी उनकी होनी है, डेट डॉक्टर ने दे दी है, तो क्या उन्हें अपनी तरफ से तैयारियां रखनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो उनको अपना जगह निर्धारित कर लेनी चाहिए कि वो कहाँ डिलीवरी कराएंगे, लास्ट समय पे असमंजस की स्थिति ना बने। सारे पहले से जो जितने भी ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी हैं वो सब एक जगह कलेक्ट करके रखने चाहिए कि 9 महीने में हमने जिसको दिखाया उसने समय समय पे सारी जांचें कराई होंगी, वो इसी दिन के लिए कराते हैं कि भाई हाँ सब सही चल रहा है, और लास्ट में भी हमें वो सारी जांचें देखनी होती हैं, तो वो सारे जितनी भी जांचें हैं, फाइल है, वो एक साथ रखनी चाहिए। और समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो वहाँ पे सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो ही जाती हैं, बाकी बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सजग रहना है और समय पे अपने जितने भी फाइल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो समय पे लेके पहुंचना है, बाकी आजकल हर हॉस्पिटल में सब सुविधाएं होती हैं।
2: बिल्कुल। इसके अलावा मैम ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, अवेयरनेस की वहाँ पर हम कमी कह सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था, कई महिलाएं होती हैं जो शर्म की वजह से, झिझक की वजह से अपनी बात कह नहीं पाती, अपनी समस्या कह नहीं पाती, तो उन्हें आप क्या मैम सलाह देना चाहेंगी?
0: उनको यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे पास आएं।

0: आपका सजग रहना ही आपकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका निदान करेगा। अगर आप हमारे पास नहीं आएंगे, नहीं समस्या बताएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र बनाए हैं, आशाएं बनाई हुई हैं, मतलब आशा रखी हुई हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो समय समय पर बार बार उनके पास जाते हैं कि आपको कोई समस्या है, तो वो आपकी मित्र सहेली जैसी होती हैं, महिला ही महिला को तो बता ही सकती है, इसलिए वो आशाएं रखी हुई हैं गवर्नमेंट ने ताकि उनको वो बताएं, तो आशाएं हम तक फिर वो पेशेंट्स लाती हैं, वो हमसे उसका एग्जामिनेशन करवाती हैं, तो हम समय पर उनको वो सलाह दे पाते हैं। तो आपको अपनी समस्याओं के लिए खुद ही सबसे पहले सजग रहना पड़ेगा, अपना स्वास्थ्य का खुद ही सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी समस्याओं का निवारण हो सकेगा।
1: बिल्कुल। और मैम, जैसा कि बातचीत के दौरान आपने जिक्र किया था कि जब ये प्रसूति फिस्टूला होता है तो मेंटल हेल्थ पर भी उसका बहुत असर पड़ता है, तो ऐसे में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका क्या रोल होता है, वो किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, एक मोरल सपोर्ट उस महिला को दे सकते हैं?
0: बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि जब फिस्टूला बन जाता है तो मल द्वार लगातार से जैसे मल आ रहा है, अब आप समझ सकते हैं कि किसी महिला में लगातार लैट्रिन का रिसाव हो रहा है या यूरिन का रिसाव हो रहा है, तो जिसमें उसमें अजीब सी स्मेल रहेगी
1: जी,
0: ऐसे समय पे वो आगे हस्बैंड के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने में भी असमर्थ रहेगी, वो खुद ही इतनी परेशान रहेगी कि हो सकता है वो मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो, तो उसको हर तरीके का मेंटल सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए
1: जी।
0: जितनी जल्दी आप उसको दिखा देंगे और वो इस बीमारी से निजात पाएगी, तो वो आपकी फैमिली के लिए और उस महिला के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो उस समय उसको मेंटल सपोर्ट देना चाहिए, ये नहीं कि उसको और आप ये कह दें कि अरे तेरे में से बदबू आ रही है, तुझे ऐसा है, बिना कारण जाने, बिना कारण जाने कि उसमें से स्मेल क्यों आ रही है, क्या है, उस महिला को और इग्नोर करो, उस महिला को आप और बुरा भला कहो, इंस्टेंट कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओ और चेकअप करवाओ, तो वो उसके मेंटल प्रेशर को और बढ़ा देता है, क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ अभी भी सेकेंडरी सिटीजन की तरह रहती हैं घर में, और वो अपने आप नहीं आ पाती हैं, तो कम से कम उनके घर वाले उसको लाएं हॉस्पिटल में, और लाते ही अगर जैसे ही वो सिम्टम्स बताएंगी तो ये बिल्कुल आराम से डायग्नोस होता है, और उसका अच्छे से अगर हम सर्जरी करें तो ये बहुत अच्छे से ट्रीट भी किया जा सकता है
1: जी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये समस्या है किसी महिला को तो इलाज पूरी तरह से संभव है और रिकवरी 100% इसमें हो सकती है।
0: हाँ बिल्कुल हो जाती है
1: जी। और मैम, चलते चलते हमारे जो श्रोता हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: उन्हें मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि मतलब प्रेगनेंसी होना एक भगवान का बहुत अच्छा वरदान है, तो इसमें आप महिला को बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, महिलाओं को पहले से ही पोषण की जानकारी दें, समय पे ही उनका पहले से ही हीमोग्लोबिन कितना है, थायराइड कितना है, बीपी कितना है, शुगर कितना है, और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो पहले नहीं हुई, इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए समय पे डॉक्टर्स को दिखाएं, वो आपको समय समय पे क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगे, किस किस तरह की सोनोग्राफी होगी, वो सब बताएं। इसके अलावा उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, और अगर ऐसी कोई समस्या आपको लगती है कि हमारी महिला और हमारे कपल्स के बीच में हो रही है, तो आप उसका अपने डॉक्टर से समय पर संपर्क करें, निदान करवा सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बेहतरीन जानकारियां आपने पहुंचाई हम तक, हमारे श्रोताओं तक, और उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी।
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी सेहत का समय बस यहीं तक था, तो चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीणा ने, प्रस्तुति थी राजेश महावर की, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग हमें मिला मनोज कुमार भारद्वाज और नरेश कुमार मीणा का, और इसी के साथ कार्यक्रम आपकी सेहत से निशा को दीजिए इजाजत, अगले शनिवार आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ।
0: थैंक यू।
1: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत, ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। कुछ ही पलों में श्रोता हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन, 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के 4 शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। देश में आज 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 47 स्थानों पर लगने वाले इन मेलों के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इधर प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अजमेर में और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। गौरतलब है कि देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेल विकास कार्य प्रगति पर हैं। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव कल पाली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद राजस्थान के लिए 46 नई रेल सेवाओं की शुरुआत की गई है।
1: सारी नई गाड़ियां चालू हो पाएगी, साथ ही साथ 85 स्टेशनों का नव निर्माण राजस्थान में हो रहा है, जिसमें करीब 15 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। बाकी सब जगह बहुत अच्छे तरीके से तेजी से काम चल रहा है और देश भर में 1300 स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है। आने वाले समय में रेलवे की और कई नई सुविधाएं देश को मिलेंगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि राज्य में मोबाइल मेडिकल सेवाओं और निशुल्क जांच शिविरों के जरिए गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंच रही है। श्री बिरला कल कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के शिलान्यास समारोह के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 200 बेड के इस आधुनिक अस्पताल के बनने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सकेगी।
2: बहुत दिनों से मांग थी कि यहाँ जिला अस्पताल हो। 62 करोड़ की लागत से बनने वाला जिला चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ है। ये सारा इलाका जहाँ मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं, यहाँ के लोगों को कोटा या झालावाड़ इलाज के लिए जाना पड़ता था, आने वाले समय में सभी का इलाज यहाँ पर होता है। तो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, अस्पताल हो, दो दो महाविद्यालय हो, टेक्निकल महाविद्यालय हो, तमाम चीजें जो एक आवश्यकताएं थी जो रामगंज मंडी में बरसों तक अभाव थे, उनको पूरा करने का काम किया।
0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। 15 मई को 3 रुपए, 19 मई को 90 पैसे बढ़ाने के बाद अब ईंधन की कीमतें फिर बढ़ने से हाल के दिनों में अब तक लगभग 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच ये निर्णय लिया गया। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया है। मनीषा संजय हवलदार नाम की महिला के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकरण में सीबीआई ने देश भर में जयपुर सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी लेने के आखिरी तारीख और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदक के अत्यधिक और तकनीकी व्यवधान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इसे विद्यार्थियों को

को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के वास्ते 2 दिन का समय मिल सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं।

0: मंडल और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन किया गया। साथ ही ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी, पेंशनर्स कल्याण के बारे में भी फैसले लिए गए। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण, जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान तथा पीने के पानी और बिजली आपूर्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, अक्षय ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 संशोधनों को मंजूरी दी है। उद्योग मंत्री ने बताया कि अब पेंशनर्स फेस स्कैन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
1: जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी। लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या एसएसओ आईडी से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण।
0: बैठक में राजपत्रित अधिकारियों के साथ ही अराजपत्रित अधिकारियों को भी एसएसओ आईडी से जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए जमीन आवंटन की मंजूरी भी दी गई। कांग्रेस पार्टी का चिंतन और प्रशिक्षण शिविर आज से पुष्कर में शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के 4 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री के पार रहा। 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा। वहीं 25 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट आई है। हालांकि भीषण गर्मी और तपिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने और हीटवेव की संभावना जताई है। कुछ हिस्सों में आज तेज रफ्तार धूल भरी हवाएं चल सकती है। इस बीच बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर के अर्पणा शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए। या
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के 4 शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40

0: डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
1: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
0: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
1: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
0: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
1: डर।
0: हाँ, मन में डर जो होता है,
1: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
0: क्या बात है।
1: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
0: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
1: बिल्कुल सहज रूप।
0: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
1: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कहिए 11th कहिए,
0: जी जी,
1: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है, तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल ओबी

0: केवल लड़कियों के लिए यह सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा दे के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा। 12 साल मैं बजा चुका और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा उन्होंने कहा
1: जी।
0: तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया, वो सिखाते थे मैं बजाने लगी और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी
0: है, उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी जी
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन और वो, तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए

0: उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में इंस्ट्रूमेंट में,
1: इंस्ट्रूमेंट
0: जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका, किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर
0: है। उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली
1: की।
0: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
1: था। बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है
1: जी, जी।
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बना।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ एक घटना बता दी इस संबंध में
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्य हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे
1: जी।
0: तो मेरा कार्यक्रम था यानी आज

कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में करोगी तुम, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं

0: था ही अंदर। उसके बाद मैं चल मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम। तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे। जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बचाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का। तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
2: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

लो सखियों, थाम लो अपना दिल, क्योंकि बज चुका है आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर महिला जगत कार्यक्रम का बिगुल। चंबल के लहरों से छनकर आती हुई सुबह में रेडियो सेट ऑन करके बैठी मेरी सभी सहेलियों सखियों को जिज्ञासा का प्यार भरा नमस्कार। खम्मा घणी राम राम सा।

चित्र गिरा दो। जी हाँ, हमारी सखियों की मुस्कुराहट, उनकी हंसी और उनका बयां करने का जो अंदाज है ना, हर जगह इत्र ही गिराता है। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है सुख को ताला किसने लगाया है। जी हाँ, सुख को ताला किसी ने नहीं लगाया है, केवल हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं, वो जरूरत से ज्यादा हो गई है। तो कोई बात नहीं सखियों, उम्मीदों को थोड़ा कम कीजिए और सुख की चाबी को स्वयं ही ढूंढिए। और अभी सबसे बड़ी परेशानी है गर्मी की। गर्मी पुरजोर है और ऐसे में हर जगह पसीना छूट रहा है, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, हर जगह कोई ना कोई परेशानी महसूस हो रही है। और बच्चे लड़ रहे हैं क्योंकि सूरज की तपिश ने आंगन को दहकाया है। मई के इस महीने में फिर छुट्टियों का मौसम आया है। घर का वो कोना जो कल तक शांत सोया था, बच्चों के शोर ने उसे फिर से जगाया है। कोई मांगे शिकंजी, किसी को आम की फिक्र है। रसोई की उस गर्मी में भी बस तुम्हारा ही जिक्र है। चंबल की इस लहर सी तुम अविरल, तुम पावन हो। इस तपते हुए मौसम में तुम ही भादो, तुम ही सावन हो। और करीब आ जाइए रेडियो सेट के, क्योंकि आगाज हो चुका है महिला जगत कार्यक्रम का।

बिल्कुल सखियो, प्रेम का कोई रंग नहीं होता। रंग गेरुआ हो, लाल हो, पीला हो या गुलाबी हो, प्रेम का रंग प्रेम का ही होता है। और महिला जगत कार्यक्रम में प्रेम का आगाज, या यूं बोलो कि महिला जगत कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। और आज आपके साथ है जिज्ञासा की आवाज। और गर्मी की छुट्टियां लगातार चालू है, बच्चे परेशान है, महिलाएं भी परेशान है। और ऐसे में क्या याद आता है? ऐसे में याद आता है कहीं बाहर सैर करने चले जाएं और घूम आए और सुन ले ये वाला गीत। JKLM NOPQRSTUVWX YZ I love you।

सखियों, ABCD EFGHI ये वर्णमाला नहीं, चंद अक्षर नहीं, ये हमारे जीवन की पहली सीढ़ी है सखियों, जहां हमने दुनिया को शब्दों में पिरोना सीखा। लेकिन कभी आपने सोचा है वर्णमाला की ये शुरुआत ए से होती, पर जिंदगी की असली पाठशाला की शुरुआत होती है अनुभव से। आज हम अपनी आंखों में असीम सपने लेकर आगे बढ़ रहे हैं सफलता के इस दौड़ में सखियों। जब कभी हमारे कदम डगमगाते हैं या कोई चूक हमसे होती है तो वो हार नहीं होती बल्कि जीत होती है। और किसी शायर ने कहा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में,

तिफलत या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, अर्थात कोशिश करते रहें, ठोकर भी उसी को लगेगी जिसने ठोकर से संभलना सीखा है और इतिहास भी वही रचता है। अनुभव का चश्मा लगा, देख जगत की रीत, ठोकर खाकर जो संभले अंत उसी की जीत। तो अनुभव को अपनी ताकत बनाएं सखियों, और साधारण को असाधारण बना करके देखें, यानी कार्य ऐसे करें जो असाधारण बन जाए। चंबल की धारा जितनी खूबसूरत होती है ना सखियों, उतने ही उसके किनारे गहरे होते हैं। इसी प्रकार जीवन के सफर में अनुभव से जो हमें सीख मिलती है और उस सीख से हमारे अंदर जन्म लेती है एक शक्ति, और वो शक्ति होती है सावधानी की। अनुभव का रास्ता है तो सावधानी उस रास्ते पर बिछे कांटों से, जो पैरों के नीचे जो कांटे आते हैं ना, वो कांटे हैं, यानी कि सीख हमें कांटों से बचना सिखाती है। इंटरनेट की इस आभासी दुनिया में सखियों, जहां पर साइबर अपराध होते हैं, धोखे जहां बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है। जैसे हम गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी हमारी जिंदगी के प्रति है। अपनी बैंक की गोपनीयता जानकारी इनको सुरक्षित रखिए, हर किसी को ना दें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अनजान लोगों पर भी विश्वास ना करें। और सखियों, ये दौर जितना अविश्वास का है उतना विश्वास का भी है। रिश्ते जहां हमारी ओर से कायम है, या ये बोले कि अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, तो अच्छे रिश्तों को, अच्छी चीजों को अपने साथ लेकर के चलें, समझदारी रखें। अनुभव आपके जीवन में है ही, उस अनुभव से अपनी कामयाबी को हासिल करें। और चलिए आपको सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क।

0: रही है।
1: श्रोताव एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: आइए सखियों, अब सुनते हैं पूर्व प्रसारित लघु नाटिका मुझे बढ़ने दो।
3: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी
4: कबड्डी कबड्डी।
5: अरे चंचल, तू तो हर बात कमाल करती है यार, इस बार भी जिता दिया तूने।
6: तारीफ करने का शुक्रिया नंदनी, लेकिन तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो।
7: अच्छा अच्छा, चलो फिर मिलेंगे कल अपनी पुरानी उसी जगह पर।
6: हाँ पायल, तय रहा। वैसे भी अभी माँ इंतजार कर रही होगी मेरा।
5: तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल।
6: ठीक है,
4: बाय।
6: माँ माँ,
7: अरे क्या हुआ चंचल, इतना क्यों चिल्ला रही है?
6: माँ सुनोगी ना तो खुशी के मारे उछल पड़ोगी।
5: हाँ हाँ, क्या हुआ मुझे भी तो बता बेटा।
6: माँ और दादी, कबड्डी का मैच हम फिर जीत गए।
5: मेरी होनार पोती, वो तो होना ही था।
7: अरे चंचल, ये तो बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई तूने, पर ये तो बता सुबह से कुछ खाया पिया भी या नहीं?
6: नहीं माँ, कहाँ कुछ खाया।
7: तो जा फिर बाई जी से कह दे, वो खाना परोस देंगे तुझे।
5: क्या सोचने लगी बहू।
7: माँ बेटियाँ भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मैं आज ही हिसाब लगा रही थी कि अपनी चंचल 17 साल की हो गई है। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना माँ, पता ही नहीं चला।
5: सच कह रही है बहू, तू वक्त कैसे पंख लगा के उड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा।
7: बस माँ, अब तो चंचल के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देंगे इसकी।
6: क्या कह रही हो माँ, इतनी जल्दी शादी करोगी मेरी? मुझे पढ़ना है अभी।
5: हाँ हाँ बहू, अभी चंचल की उम्र ही क्या है, जीने दे इसे अपनी जिंदगी। देख वो वक्त अलग था जब मेरी शादी 10 साल में और तेरी शादी 13 साल में हो गई थी।
7: हाँ माँ, लेकिन दुनिया और समाज के हिसाब से भी तो सोचना पड़ता है ना।
5: अरे बहू, तू एक बात गांठ बांध कर जरूर रख ले, याद रख, खुशियाँ बेचने निकलेगी तो हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन गम खरीदने के लिए एक ग्राहक ना मिलेगा तुझे। इसलिए दुनिया से पहले अपनी बेटी के बारे में सोच। और हाँ, कह देती हूँ, इस बात के लिए मुझे तुझको बार बार ना समझाना पड़े।
6: थैंक यू दादी, अब बहुत अच्छी हो।
7: हाँ माँ जी, मैं भी समझती हूँ, अब आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा।
5: मेरी अच्छी बहू कितना मान देती है मुझे। कितनी सुंदर लग रही है मेरी चंचल, दुल्हन के रूप में किसी की नजर ना लगे। 5 साल भी यूं ही बीत गए। अच्छा है पढ़ लिख कर जा रही है अपने दूसरे घर भी।
7: तो माँ अब आपको लगता है ना कि सही समय पर हो रही है अपनी चंचल की शादी?
5: हाँ हाँ बहू, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है।

0: माँ आप खुश तो हो ना?
1: हाँ मेरी बेटी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ।
0: सुरेश देखो ना, देखो तो बाहर कितना सुंदर नजारा है। बादलों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे आते जा रहे हैं अपनी नई दुनिया बसाने के लिए। बेटा बेटी भी तो हो सकती है ना सुरेश? सच आप ऐसा सोचते हो? लेकिन बस क्या, अच्छा अच्छा छोड़ो, अब नहाने जाओ, आपके दफ्तर का समय हो रहा है ना। माँ जी मैं सोच रही थी कि मैंने एमए तो कर ही रखा है, यदि बीएड कर लेती तो अच्छे से स्कूल में नौकरी मिल जाती।
2: भाभी आपने सोच भी कैसे लिया, जब माँ मुझे ही नहीं पढ़ने देती, इतना दबा कर रखती है तो आपको क्या कुछ करने देगी वो।
1: देख वंदना ज्यादा मत बोला कर तू।
2: क्या ज्यादा मत बोला कर माँ, सच हमेशा कड़वा ही होता है।
1: चुप कर वंदना।
2: अरे अरे भैया आ गए, भैया।
1: अरे सुरेश आ यहाँ बैठ, सही समय पर आया है तू बेटा। और हाँ बहू अब तुम अपनी सेहत पर ध्यान रखो, तीसरा महीना चल रहा है तुम्हारा।
0: इसकी क्या जरूरत है सुरेश?
1: जरूरत है बहू, तुम नहीं समझोगी। और सुरेश तुम्हें याद है ना उसके बाद क्या करना है?
0: हे भगवान कैसे समझाऊं इन सबको।
1: ट्रिंग ट्रिंग।
3: हेलो।
0: हाँ नंदिनी।
3: अरे चंचल। हाँ बोल, कैसी है तू?
0: क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है।
3: अरे क्या हुआ?
0: मेरी सास और पति नहीं चाहते कि मेरी बेटी हो, इसलिए मुझे कल डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं लिंग परीक्षण करवाने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं नंदिनी?
3: अरे चंचल तू चिंता बिल्कुल मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
4: माँ माँ।
0: कौन कौन है?
4: मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारना माँ, विधाता मेरी किस्मत लिख रहा है। जानती हो वो मुझसे कह रहा था कि मैं इस गांव की सबसे अच्छी पढ़ने वाली लड़की बनूंगी और खूब नाम कमाऊंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी माँ, मुझे जन्म लेने दोगी ना? बोलो ना माँ, मुझे बढ़ने दोगी ना? कुछ तो बोलो।
0: किस किस्मत की बात कर रही है तू? नहीं नहीं दूंगी तुझे जन्म, नहीं चाहती कि मेरी जैसी घुटन भरी जिंदगी तू भी जिए, नहीं चाहती मेरी लाडली, नहीं चाहती।
1: अरे चंचल तुम्हारी माँ और दादी आई हैं, नीचे आओ जरा।
5: हाँ आई माँ जी।
0: हे राम कैसा भयानक सपना देख रही थी मैं, ये क्या हो गया है मुझे। अरे माँ दादी आप यहाँ?
6: अरे मेरी पोती ने तो याद ही नहीं किया, तो सोचा हम ही मिलाते हैं उससे।
0: अच्छा किया ना दादी।
1: चंचल तू ठीक तो है ना बेटी?
0: हाँ हाँ हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बड़ी सयानी हो गई है मेरी बेटी, मुझे ठीक होने का दिखावा कर रही है।
0: तो क्या करूँ माँ आप ही बताओ।
6: बात क्या है चंचल, तेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे।
0: हाँ दादी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते कि मेरी बेटी हो, और अब तो सपने भी मुझे डराने लगे हैं, और ऐसा लगता है कि अब मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी हो।
1: चंचल कैसी बातें कर रही है तू, तू तो मेरी बहुत ही होशियार बेटी है, तुझे याद है ना वो कविता की लाइनें, वो कविता की पंक्तियां, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
6: और देख चंचल सिंधु और साक्षी भी तो एक लड़की ही है ना, और उन्होंने तो ओलंपिक में वो कमाल कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया।
1: हाँ चंचल।
0: या बेटा लेकिन दोनों का स्वागत मैं प्यार से ही करूंगी।
3: कोई बात नहीं सुरेश, देर आए दुरुस्त आए।
5: बधाई हो बधाई, बेटी हुई है बेटी।
1: अरे चंचल तेरी बेटी तो तुझसे भी ज्यादा सुंदर है।
2: हाँ आंटी, सुंदर के साथ भाग्यशाली भी है, जिसने आने से पहले ही सबकी मानसिकता को बदल दिया।
0: हाँ वंदना तुमने बिल्कुल सही कहा। नंदिनी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है।
2: अच्छा मैडम भूलिए मत, आप अपनी दोस्त को शुक्रिया कह रही हैं।
0: सच नंदिनी मुझे गर्व है कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए आज और अभी मैं अपनी बेटी का नाम राजनंदिनी रखती हूँ।
5: अरे राजनंदिनी राजनंदिनी, नीचे आ बेटा जल्दी नीचे आ, माँ जी सुरेश जल्दी आओ सब।
1: अरे

0: क्या हुआ बहू, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो?
1: हाँ माँ, आज क्या हो गया है तुम्हें?
2: आजा मेरी बच्ची, मेरी नंदू, आज मैं पागल हो गई हूँ खुशी के मारे। तो सुनो सुनो सुनो, आज नंदनी की फोटो आई है पेपर में और आप सबकी राज नंदनी ने IAS की परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया है और इसके लिए सरकार राज नंदनी को सम्मानित भी करेगी।
1: सच्ची माँ? मैंने? वो भी राष्ट्रीय स्तर पर टॉप किया है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही ना माँ?
2: हाँ नंदू, सच्ची मुच्ची।
1: वाह, मेरी पोती ने तो मुझे बहुत ही बड़ा उपहार दिया है। मिठाई लेकर आ सुरेश, मिठाई। मैं तो आज सारे गांव में मिठाई बांटूंगी।
2: आज मेरा जीवन सार्थक हो गया राजनंदनी। जानती है, तूने जन्म लेने से पहले मुझसे कुछ मांगा था कि माँ मुझे बढ़ने दोगी ना? देख कितनी आगे बढ़ गई है तू मेरी नंदू।
1: माँ, आप सबने भी तो मेरा कितना साथ दिया था। आप सब साथ नहीं देते तो मैं कैसे आगे बढ़ती? अरे तुम माँ बेटी दोनों मिलाप ही करती रहना, लेकिन पहले इस घी शक्कर से मुंह तो मीठा कर लो भाई।
3: सखियों, अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता मुझे बढ़ने दो। गर्मी की छुट्टियां चालू हैं और ऐसे वक्त में बच्चों के लिए बहुत से काम होते हैं कि किताबों से दूर रख करके हम उन्हें कई चीजें सिखा सकते हैं, उनके अंदर छिपे कलाकार को जिंदा रख सकते हैं, उन्हें वैज्ञानिक बना सकते हैं, अगर उनमें लेखक का कौशल है तो वो जगा सकते हैं। आप उन्हें चित्रकारी सिखाएं, कोडिंग, रोबोटिक्स, डिजिटल डिजाइनिंग, तैरना, आत्मरक्षा या फिर रसोई में बिना आग के कुछ पकाना भी सिखा सकते हैं। याद रखिएगा सखियों, एक पौधा तभी वृक्ष बनता है जब उसकी जड़ों को सही समय पर पोषण मिले। तो छुट्टियों का यह निवेश आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उनके साथ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सीधे सीधे काम में न जुट जाए। सुनते रहें आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते यही बात कहूंगी, रास्ते सीधे हो या मुश्किलें हो हजार, चलते रहिए कि चलना ही मुकद्दर है अपना। जो चलते हैं मंजिलें खुद करती हैं उनका इंतजार। तो चलते रहिए और खुश रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम महिला जगत। आज के कार्यक्रम से दीजिए अनुमति जिज्ञासा को। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। अब श्रोता आनंद लेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मो रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अता नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं, और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं, या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जा यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगे और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती, वहाँ के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा।

से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया, तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के की कटोरी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

थोड़ी देर बाद एल्युमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों

पर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं

हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो, संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ा कर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल है। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

फतेह। रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है, उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए। लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: भगदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली। इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ग्यावस्ती आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो।

मैटिनी शो के इस ताजा तरीन अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आज के इस अंक को लेकर दोस्तों, फिल्मी दुनिया में फिल्मी पर्दे पर फिल्मी गीतकारों ने हमारे आभूषणों पर बहुत सारे गीत लिखे और नायिकाओं को वो आभूषण पहनाकर हमें बहुत ही आनंदित किया है ना। तो ऐसा ही एक आभूषण है झुमका। जी हाँ, झुमका, जिस पर हमारे फिल्मी यानी यूं कहीं फिल्मकारों ने और फिल्मी गीतकारों ने बहुत सारे गीत लिखे और पर्दे पर फिल्माए। तो आज उन्हीं गीतों को लेकर हमने इस मैटिनी शो को आपके लिए चुना है। जी हाँ, झुमका। झुमका शब्द आते ही कितने सारे गीत आपके कानों में गूंज गए होंगे ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और मैं जाने ऐसे कितने सारे गीत। जी हाँ, तो झुमका एक आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक भी है। कानों में झूमते हुए और छन छन की आवाज करते हुए ये सुंदर झुमके हर पहनावे की शोभा बढ़ा देते हैं। तो आज मैटिनी शो में ये झुमके कहर ढाने वाले हैं।

तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे,

और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे साथियों। हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया

सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ा रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची,
तो मार्केट तक

आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेट बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक में हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है,

पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले से जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी

0: भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: अभी आप रोजगार मेला 2026 कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कोटा के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के

0: ने अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपए तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: 11 थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर

0: अरे किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं

0: लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
0: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
0: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म कोहरा का ये गीत।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब का संगीत, कैफी आजमी की बोल, सुलक्षणा पंडित की आवाज और फिल्म का नाम संकल्प।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, फिल्म का नाम है अर्थ।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है और उन्हें इस संकल्प के लिए भागीदारी निभानी होगी। देश में 47 स्थानों पर आयोजित 19वें रोजगार मेले में आज प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को वर्चुअल माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अपनी हाल की 5 देशों की यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के देश भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर।
0: प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में 1,60,000 से अधिक भर्तियों पर काम चल रहा है, जिसके लिए 4 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती थी, किंतु अब वार्षिक कैलेंडर व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से काम करने का आह्वान किया।
2: आप जब भी कोई फैसला लें, तब उस कागज को कागज न मान के, उस फाइल को फाइल न मान के, उसके पीछे लाइफ क्या है, उसके पीछे

0: ये व्यक्ति कौन है, उसके पीछे किसका जीवन जुड़ा है, उसके पीछे किस परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, वो जरूर ध्यान में रखना। दूसरा, जो भी आप फैसला करो ये याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमें हर कर्तव्य को देश के लिए ही करना है और यही वो पीढ़ी है जो विकसित।
1: इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। पहली मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर करीब 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। हाल के दिनों में इन पर अब तक लगभग 5 रूपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं। रेलवे बोर्ड ने कोटा में एक नए इलेक्ट्रिक लोको शेड खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे बिजली के इंजनों के रखरखाव और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। कोटा में इस लोको शेड के बनने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अजमेर में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर और सभागार बनाया जाएगा। इस पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज इसका शिलान्यास किया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत बजरी खनन भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई में 392 से अधिक मामले दर्ज किए। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पिछले महीने जारी निर्देशों की पालना में इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाया गया है। धौलपुर और करौली जिला पुलिस की ओर से चंबल नदी के प्रभावित तटीय क्षेत्रों में रेत कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल में आज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहां। हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं और लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपने विविध भारती के सुरीले सफर में आज की इबारत को कुछ स्पष्ट करके आसान कर दिया है। जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और बजने वाले गानों का निर्णय हो ही गया समझो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने इबारत की जगह खुद गीतों के शब्द लिख दिए और उसमें ये भी लिख दिया कि सभी गीतों के संगीतकार एक ही हैं और ये सभी गीत दो महिला गायिकों के स्वर में होंगे, तो वैसे बहुत मुश्किल तो हो गया है। इबारत में शब्दों को ढूंढकर हम कई गीत सही लिख देते थे, लेकिन आज की परीक्षा मुझे लग रहा है और कठिन है। मैं दावे के साथ लिख रहा हूं कि बहुत ही कम श्रोता ढूंढ पाएंगे। बस एक शब्द गोरी पे दो महिला गायकी ढूंढ पाया हूं, बाकी गीतों पर नजर दौड़ाई तो संगीतकार भी अलग अलग दिमाग में आ रहे हैं। उफ, कर दिया दिमाग का दही। अरे इतना दिमाग को खराब करने की जरूरत थोड़ी है। ये कार्यक्रम तो मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है आपके लिए, है ना। इसमें हमें अपने दिल और दिमाग को बहुत ही शांत और सुकून से भरा रखना है, तभी तो ये सफर सुरीला बन पाएगा। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने इबारत पर से इबारत न लिखकर सभी श्रोताओं की इच्छाओं को साकार कर दिया है। खूब अच्छा लगा, जो बात हम चाहते थे वही हो गई। आज मैं गीत सूची तैयार न करते हुए सिर्फ जो गीत बजने वाले हैं उसे सुनने का लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि जो गीत सुनवाए जाने वाले हैं उसके संगीतकार चित्रगुप्त होंगे, जो मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक है। बचपन से इनके रचे गीत सुनकर मेरे दिल की धड़कन रंग लाती है, आपके दिल की धड़कन भी रंग लाती होगी। ये विविध भारती के दायरे, ये दोपहर का समा, ऐसे में क्यों न जुड़ जाए हम वहां। मिलते हैं दोपहर 1 बजे। क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो गीतकार भी बन गए हैं लगता है, और शायर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के और हम पढ़ेंगे विचार, जहां उन्होंने कुछ गानों को बिल्कुल सही रूप से समझा है। ये गाना है फिल्म परदेसी का, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की ही हैं, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाए ऐसा हो नहीं सकता, जरूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूं और विविध भारती का आभारी हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा, निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमाग की कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, गौरी तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज

गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं। अब गानों और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मिल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतजार है। ठीक है, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफर है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफर तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और ये सफर सुहाना होगा। बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है नई जिंदगी, प्रेम धवन की बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने

जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का? जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है, और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं? बिल्कुल, आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया, समझो। अरे वाह, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है? आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी, कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं, क्योंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आरा फिल्म का लता मंगेशकर और आशा भोसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद है, जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं, आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं इस बार। फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है, बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डालें, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे, धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए, बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये आपके मनोरंजन के लिए, इसका आनंद उठाइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वहीं आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी जानकारी बता पाएंगे, चलो चलें सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, SG बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहां तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की पोस्ट देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने

दूसरे गाने लिखे हैं लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में, जो जुगलबंदी वाला गीत है लिखते हैं। ये गाना मेरा फेवरेट है फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें। साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की ये संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और

आशा भोसले का गाया हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है। बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी उषा मंगेशकर और आशा भोसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफर में तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा, अगर आप हैं हमारे साथ तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बाहर आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है, इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

0: बन।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचना ही थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में एक इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश हैं और काफी हंसमुख लग रही हैं। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांद रे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमाकर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी बहका हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरीला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखिए ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है। अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें, ऐसा प्रयास करके तो देखें। जिंदगी एक नए रूप में, नए रंग में मुस्कुराती नजर आएगी।

लेकिन आज के जीवन की आपाधापी में कोई आपका साथ न दे, कोई आपकी पीठ न थपथपाए, आपकी सफलता पर तालियां न बजाए, तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा हितैषी तो ऊपर वाला होता है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए, आप अकेले ही पूरी दृढ़ता के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, ज्योति तोर डाक्षुने के उनाशे तबे एक।

दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी।

0: मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ. सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2

0: 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि

श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने

0: को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमी कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थी। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार है पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: 鬼马的鬼的这个，
1: 那鬼开马的这个，
0: 那鬼地的鬼的这个，
1: 那鬼路给咱的这个。

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमति। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सैक्यू की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोंसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता, जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है।

0: कार्यक्रम की शुरुआत आज आपके साथ शनिवार की दोपहरी सीमा वर्मा और कार्यक्रम आप जानते हैं मन भावन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो मन को भाता है वही ख्यालों में भी आता है और जुबां पर भी आता है, और ऐसा ही कोई एक गीत जो आपके मन को बड़ा भाता है और आपके ख्यालों में आपका कोई खास है तो हम तक पहुंचाइए। कैसे भला? fmgoldair@gmail.com एक बार फिर से सुन लीजिए वो पता जहां आपको अपनी फरमाइश पहुंचानी है, fmgoldair@gmail.com। इस पते पर अपनी फरमाइश आप किसी अपने को सुना सकते हैं, नहीं जी जा रहा है सिर्फ खुद के लिए कोई गीत सुनने का आपका मन कर रहा है तो भी आप सुना सकते हैं अपने को, खुद को गीत। बस आपको करना यह है कि आपको जी हम तक अपनी मेल पहुंचानी है, और अगर कोई खास दिन है आज तो भी हमें बताइए, साझा कीजिए, हम भी आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं।
1: गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू, और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।

0: मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
3: मन चाहेगी।

0: पधार रहे हैं।
1: आप सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सूखते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं ही नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी,
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
6: जी महाराज,
1: राणा हाड़ा को ये शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
2: जी महाराणा।
1: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगी तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखला भी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ ऐसे,
3: यहाँ यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी है, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधू इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधू जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ
3: अरे रे,
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन जी, भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
2: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम कितना तेजस्वी मुख है, आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे, जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं। कौन?
1: स्वागत है।
3: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
3: ना,
1: अब ठीक है। देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नत, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर।

0: मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
1: स्वामी, मेरे देवता।
0: सच?
1: मैं तुम्हारी पुजारी।
2: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
0: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो।
2: नगर की राजकुमारी
0: चंद्रमुखी
2: बलपूर्वक विवाह करने के लिए
0: चकोर
2: अपनी विशाल सेना
0: ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
2: नगर के राजा ने
1: स्वामी
2: हमारे महाराणा से
1: इस पागल पर
2: सहायता की प्रार्थना की है। महाराणा के
0: तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं।
2: अनुसार
0: मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया
1: हूँ।
0: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
1: सुना आपने?
0: इधर
1: स्वामी।
0: प्रिय,
1: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
0: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई है?
1: स्वामी, सुनिए नगाड़े की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
0: ओह, मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
1: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
0: प्रियतम,
1: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
0: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं। कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएगी।
1: स्वामी, ये केवल आपका मोह और वासना है।
0: रानी,
1: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
0: रानी,
1: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
0: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी न हुई थी। क्या करूं?
1: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठी और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो,
1: आप इस पुष्प शैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
0: हूँ। ठहरो रानी,
1: ये हरावंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो। रानी सुनो तो।
1: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर ये कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधुर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं, नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बालक के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामन की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
0: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
1: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
0: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा, तुम मेरी रग रग में समा गई हो।

0: मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
1: नाना।
0: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
1: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
0: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
1: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य विजय दे।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित होती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को ना दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
4: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी बच्ची, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
4: ये क्या कर रहे हैं?
2: इधर आ, इधर आ।

सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा। रानी जी मुझे छोड़कर मत जाओ पगली। रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है। ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े कर्वोन्नत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है, जल्दी कर ला कृपाण। ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शीष रण सिंह को दे देना। कहना कहना रानी ने यह विजय

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामंत के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख ले और सामान तक शीघ्र पहुंचा दे।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं दारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
3: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
3: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
3: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
3: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
3: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्षस्थल को सुशोभित कीजिए।
3: Hurting!

0: नहीं, आपने ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
1: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूँ। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हमारी रानी तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से, मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो, मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है, भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों आगे बढ़ो,
3: विजय हमारी है।
0: अच्छा की सेना उल्टे पैर भाग गई।
2: सच रण सिंह, हम विजयी हुए?
0: हाँ सामन, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामन,
2: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
0: मैं चाहता हूँ सामन, आप कहाँ जाने जा रहे हैं? सामन
3: तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
4: जी। सामंत,
3: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
4: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
2: रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था, लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तरफ से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में यस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे
3: वाह। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन भी था और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपए उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था।
2: हाँ।
3: तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है।

0: तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
1: चबूतरे में हुआ,
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
1: ओके,
0: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर। बहुत
1: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
1: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
0: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी।
1: हाँ।
0: तो उसी तरह से कि कहा ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहा ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहा ले आए।
1: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
0: कहा ले आए राजा पहाड़िया में,
1: मतलब बुंदेलखंड,
0: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, पलगत चुनरिया मेरे कहा ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहा ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो मजा आ गया।
0: बहुत ही मजा, बहुत मजा। तो यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ।
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग एक महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा।
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे और
0: मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे।
1: हाँ।
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, लाइक
1: तो बुंदेली में था ये।
0: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब हाँ। मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा।
1: हाँ।
0: तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया, और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ। फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान,
1: जो
0: कि काफी बड़े एक्टर
1: हैं, पन्ना के ही हैं।
0: पन्ना के ही हैं। तो वो NSD से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5-star होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चलनी है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहां पे एक महीने रहना है। तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है।
1: अरे
0: इन्हें कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो।

0: और म्यूज़िक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुँचना है।
1: तो डायरी में लिख गया?
0: हाँ, तो मैं लिख गया अब ये मुझे पहुँचना है NSD। तो फिर वहाँ
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी,
1: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी जी।
1: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम। गाना सुनता, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए।
1: क्या बात है।
0: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे।
1: बिल्कुल, वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके।
0: जी जी जी, हमने बहुत देखा है फिल्म को।
1: वाह,
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी।
1: हाँ,
0: जो भी CD पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह। हाँ, ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है, जो तब तक एनएसडी में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है, एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा, जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ, तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद में दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है।

0: जहाँ मुझे पढ़ना है,
1: तो मंडी हाउस चले।
0: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं एनएसडी की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे, हाँ। आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे,
1: हाँ।
0: और मैं ऐसे हो गया। फिर मैं एनएसजी के गेट पे पहुंचा और मैं एनएसजी, मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है,
1: हाँ।
0: और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक, उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
1: जी।
0: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कह रही अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा। मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
1: वो छोटा वाला,
0: छोटा वाला फोन, तो उसमें एक मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी,
1: हाँ।
0: तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
1: बस रिकॉर्ड कर दो,
0: इसमें रिकॉर्ड कर दो, एक मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में,
1: हाँ।
0: तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
1: अरे गजब,
0: और तुम अनुशासित हो,
1: एक मिनट में सब
0: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो,
1: हाँ।
0: तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
1: तो कॉलेज में इस शहर में था,
0: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा, और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सक्सेना का नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए, और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
1: अच्छा
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो, आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
1: बिल्कुल,
0: हाँ, आप जानते होंगे बहुत बढ़िया कवि हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
0: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा,
1: बिल्कुल
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा। और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे,
0: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा, हाँ, मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं।

0: उन्होंने बोला नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं और एक घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले। अच्छा। और उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि उनका ग्रुप का नाम नटबुंदिल है और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आने गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, वेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं आना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे। मैं सर कुछ भी करूंगा मैं, आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी शामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जीतेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा। तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई उस महफिल में, सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते पांच रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते पांच रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने,
1: वाह वाह,
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते पांच रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मिला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह,
0: आज ते पांच रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते पांच रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: कहते हैं देवेंद्र,
0: उस समय ये बुंदेलखंड के कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था और रोल बना के उसमें नमकीन डाल देता और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस वहां खाना हो गया,
0: खाना हो गया। और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था।

टाइम से पहले पहुंचता था तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था। एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे

बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था। एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे। वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक मुझे करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नी, वो मुझे सिखाते थे ले लो नी ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी। और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, यार ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुरा शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, ऐसे ने अवॉर्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सह में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया, सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं इसे इंस्पायर हो इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: असहमे है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, क्यों रूठे किनारे, क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने की शुरू किए, क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या
0: लिखने भी, लिखना लिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। अगले
1: को यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है, एक गाना सुनते हैं उसके बाद ये दास्तान सुनेंगे। तो बताओ यहाँ कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का
1: गाना है,
0: बहुत ही सुंदर गाना है,
1: बहुत सुंदर गाना है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: तो
0: इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसे कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा

0: सिलसिला है, और फिर
1: म्यूजिक का सिलसिला चल
0: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ, और फिर वीके सन ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
1: अच्छा,
0: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है
1: डेस्टिनेशन। वो बोर्ड और
0: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है।
1: हाँ।
0: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
1: अरे
0: मैंने कहा अरे यार। तो फिर मुझे पढ़ने का वहां पे मौका मिला, और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
1: ओके।
0: और तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया,
1: और वहीं वो
0: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
1: मिले धुरंधर
0: जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
1: हाँ।
0: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
1: जी।
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता है, परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग इसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे। बंदूक किसके पास है? मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि
1: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये हाँ, बहुत
0: मैं बताऊं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था। शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था।
1: हाँ।
0: तो लोग हंसते थे।
1: हाँ।
0: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ, हाँ।
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की। हाँ। मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था।
1: शक को सा बोल रहे हो?
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
1: हाँ।
0: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना।
1: हाँ।
0: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे।
1: हाँ।
0: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था, जिसमें मैंने सा को सही बोला था।
1: हाँ।
0: शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोल रहा था इतने दिन से, तुमसे यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके, ओके।
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया, और मैंने एक बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरुद्ध खुटवर सर। और मैंने, मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे, और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज मैं नहीं करता था सबको उसको करना है, मैनेज्म पकड़ने की कोशिश की। और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ, पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे सामने आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला, और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो, तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया, और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं, और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है आपने?
0: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था, जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल
0: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा
0: हाँ तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे और कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत

0: देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
1: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक, कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और वो मैंने रिकॉर्ड किए, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था उस डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया,
1: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहां हर हाल में पहुंचना है, जहां जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: अच्छा।
0: वो क्योंकि रेडियो को बंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: और उसका एक गाना सुनाओ यार,
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको,
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी अभी बता देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के
1: बदल दी।
0: उस पर एक कहानी है, हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है, तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको को

0: के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या पै
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है। सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात, बढ़िया गाना।
0: जी जी जी।
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर, जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
0: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिग्गी। जिग्गी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिग्गी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा,
1: बेचारा
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है बहुत, मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल
0: चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो फूंक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुन
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं, मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
0: तो
1: और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
0: जी जी जी।
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
1: बिल्कुल,
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में,
1: बिल्कुल,
0: मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे।

0: बैरन होगी जिंदगी में कहां से कहूं, जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूं तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूं, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आपके साथ बैठा हुआ था।
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके। और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदन दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

102.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: कभी कभी सुबह की हल्की सी हवा भी कुछ कहती है, जैसे वो हमें याद दिला रही हो कि हर नया दिन एक नया मौका है, कुछ महसूस करने का, कुछ सीखने का और कुछ अच्छा शुरू करने का। और आज की ये शाम भी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक अलग ही सुकून है।
1: और अगर ध्यान से सुना जाए तो हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी होती है, कोई खुशी की, कोई उम्मीद की, तो कोई उन अधूरी बातों की जो दिल में रह जाती है। लेकिन ये वाणी पर हम कोशिश करते हैं कि हर आवाज को एक नया मतलब मिल सके।
0: और सबसे खास बात ये है कि रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ न तो चेहरे दिखाई देते हैं, न ही कोई दूरी महसूस होती है, बस होती हैं आवाजें, और वो आवाजें जो सीधे दिल से जुड़ जाती हैं।
1: कभी सोचा है, जब कोई अनजान आवाज भी आपको अपना सा लगने लगे तो समझो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव दिल से बना है, और यही जुड़ाव हमें सबसे खास बनाता है।
0: और आज हम आपके लिए कुछ ऐसा ही जुड़ाव लेकर आए हैं, कुछ हल्की फुल्की बातें, कुछ दिल को छू जाने वाली यादें, और साथ में ऐसा संगीत जो आपके मूड को और भी बेहतर बना देगा।
1: और हाँ, आज के सफर में हम कोशिश करेंगे कि हर पल आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान जरूर आए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराते हैं तो समझिए हमारा शो सफल हो गया।
0: वैसे एक बात पूछो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल लोग बहुत जल्दी भाग रहे हैं लेकिन अपने लिए थोड़ा समय कम ही निकालते हैं?
1: बिल्कुल, हम सब कहीं ना कहीं जल्दी में हैं, लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज वही है जो हम भूल जाते हैं, थोड़ा रुकना, थोड़ा महसूस करना और बस अपने लिए जीना।
0: बिल्कुल सही कहा, और शायद यही वजह है कि यवानी जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जहां आप कुछ देर के लिए रुक सकें, सुन सकें और खुद से जुड़ सकें।
1: तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जिसमें ना कोई जल्दी होगी, ना कोई दूरी होगी, बस होंगे हम, आप और ये खूबसूरत सफर।
0: तो दोस्तों, आज कार्यक्रम में आपके साथ हैं मैं निकिता
1: और मैं स्वर्णिम,
0: और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का युवा दिल की आवाज युवानी में।
1: तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी निकिता
1: और स्वर्णिम के साथ।
0: दोस्तों, कहते हैं कमाया हुआ पैसा इंसान को खुशी देता है, लेकिन बचाया हुआ पैसा मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है।
1: जिंदगी में हर इंसान सपने देखता है, ख्वाहिशें रखता है, अच्छा घर, बेहतर भविष्य, परिवार की खुशियाँ। लेकिन इन सपनों को सुरक्षित रखने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ है बचत।
0: बिल्कुल स्वर्णिम, आज की दुनिया में कमाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है सही तरीके से बचत करना। क्योंकि वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जानता।
1: सही कहने के था। कई लोग सोचते हैं कि अभी तो ज़िंदगी एंजॉय करने का उम्र है ना, बचत बाद में करेंगे। लेकिन जब अचानक कोई मुश्किल सामने आती है, तब समझ आता है कि बचत कितनी जरूरी थी।
0: बिल्कुल दोस्तों, बचत का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं होता, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है, आत्मविश्वास है, और मुश्किल समय में सबसे बड़ा हमारा सहारा भी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, सोचिए अगर हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की जाए, तो वही छोटी बचत आगे चलकर कितना बड़ा सहारा बन सकती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा स्वर्णिम।
1: जैसे दोस्तों, मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक मजदूर था, उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो रोज 50 रुपए बचा लेता था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि इतनी छोटी रकम से आखिर होगा क्या। लेकिन कुछ साल बाद उसी बचत से उसने अपने बेटे की पढ़ाई करवाई और छोटा सा घर भी बना लिया।
0: वाह, यही तो असली समझदारी है। बचत हमें आत्मनिर्भर बनाती है, और सबसे बड़ी बात, बचत हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचाती है।
1: और आजकल युवा पीढ़ी ऑनलाइन शॉपिंग, फिजूल खर्च और दिखावे में इतनी उलझ गई है कि बचत करना भूलती जा रही है।
0: हाँ स्वर्णिम, सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर हम भी वैसा ही दिखना चाहते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि दिखावे से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित भविष्य।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आपको हम बता सकते हैं कि आप बचत कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो पॉकेट मनी में से थोड़ा बचाइए, अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरी का कुछ हिस्सा जरूर बचाइए, और अगर आप बिजनेस करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखिए।
0: और दोस्तों, सिर्फ पैसे ही नहीं, हमें समय और संसाधनों की भी बचत करनी चाहिए। बिजली बचाइए, पानी बचाइए, भोजन बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बचत हर चीज में जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहने के था, क्योंकि जो इंसान आज संभल कर चलता है, उसका कल सुरक्षित होता है।
0: तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि अमीर वो है जो अपने पैसों को समझदारी से संभालना जानता है।
1: वाह, क्या बात कही आपने। तो दोस्तों, आज से एक छोटा कदम उठाइए, चाहे 10 रुपए हो या 100 रुपए, बचत शुरू कीजिए, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़े सपनों को पूरा करती है।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर।
2: दुनिया ये गोल है, अंदर से पोल है, रुपए का मोल है, बाकी सब झोल है। इनकम हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा, जीवन की गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी है ठन्नी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आवाजें जो बरसों से हमारे जीवन के हर रंग में रच बस गई है।

0: है सनम।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों आइए आपको लेकर चलते हैं भारत के एक ऐसे जंगल में जहां प्रकृति आज भी अपनी सबसे शांत और खूबसूरत आवाज में सांस लेती है। और दोस्तों वो जगह है साइलेंट वैली नेशनल पार्क।
1: जी हाँ, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के केरला राज्य में स्थित एक बेहद प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में फैला हुआ है और अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है।
0: वैसे निकिता, साइलेंट वैली नाम सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे यहाँ बिल्कुल सन्नाटा होगा।
1: हाँ, स्वर्णिम नाम से तो ऐसा ही लगता है,
0: लेकिन असल में यहाँ प्रकृति की मधुर धुनिया हर समय सुनाई देती है। पक्षियों की चहचहाट, बहती नदियों की आवाज और पेड़ों के बीच बहती हवा,
1: वाओ, सुनने में कितना सुंदर लग रहा है। वैसे साइलेंस ना बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस जंगल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का वर्षा वन हजारों साल पुराना माना जाता है। यहाँ कई दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें शेर जैसी पूंछ वाला बंदर यानी लॉयन टेल्ड सबसे प्रसिद्ध है।
0: और इसके अलावा यहाँ हाथी, बाघ, हिरण, तेंदुए और कई तरह की तितलियां भी पाई जाती हैं। अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो आपके लिए जगह बेहद खास है क्योंकि यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी रहते हैं।
1: और श्रोताओं, जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता, बल्कि ये पूरी पृथ्वी के संतुलन का आधार है। साइलेंट वैली इसका एक शानदार उदाहरण है। यहाँ की हर नदी, हर पेड़ और हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
0: और इसी वजह से इस जंगल को बचाने के लिए लोगों ने एक बड़ा आंदोलन भी किया था। 1970 के दशक में यहाँ एक जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना थी जिससे इस खूबसूरत जंगल को भारी नुकसान पहुंच सकता था।
1: लेकिन वैज्ञानिकों, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस परियोजना का विरोध किया। उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार इस जंगल को बचा लिया गया।
0: सच में ये भारत के सबसे सफल पर्यावरण आंदोलनों में से एक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि जब लोग प्रकृति के लिए एकजुट होते हैं तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है।
1: वाकई दोस्तों, साइलेंट वैली के बीच से बहने वाली कुंती पूजा नदी भी यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। साफ पानी और हरियाली से घिरी ये नदी देखने वालों का मन मोह लेती है।
0: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति प्रकृति की शांति महसूस करना चाहता है, शहर की भीड़ और शोर से कुछ पल दूर बिताना चाहता है तो ये जगह उसके लिए स्वर्ग से कम नहीं है।
1: आज के समय में जब जंगल तेजी से कट रहे हैं और पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है, तब साइलेंट वैली जैसे राष्ट्रीय उद्यान हमारे लिए उम्मीद की एक किरण की तरह है दोस्तों।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों याद रखिए, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, आपके दो रेडियो हम सफर निकिता
1: और स्वर्णिम के साथ।
0: श्रोताओ, दुनिया में कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। कुछ को दुनिया के सात अजूबों में गिना जाता है, तो कुछ अपनी खूबसूरती और अनोखेपन की वजह से खुद ही एक अजूबा बन जाती हैं।
1: और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक शानदार इमारत की जो पूरी दुनिया में प्यार, कला और इंजीनियरिंग का प्रतीक मानी जाती है।
0: जी हाँ,
1: और वो है एफिल टावर।
0: दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित ये टावर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। हर साल लाखों लोग इसे देखने के लिए वहाँ जाते हैं।
1: लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इसे बनाया जा रहा था तब बहुत से लोग इसके खिलाफ थे?
0: बिल्कुल, कई कलाकारों और लेखकों को लगता था कि लोहे से बना ये विशाल ढांचा पेरिस की सुंदरता को खराब कर देगा। उन्होंने इसके खिलाफ अखबारों में कई लेख भी लिखे।
1: लेकिन समय के साथ यही टावर फ्रांस की पहचान बन गया। आज अगर कोई पेरिस का नाम ले तो सबसे पहले दिमाग में एफिल टावर की तस्वीर ही आती है।
0: इस टावर को प्रसिद्ध इंजीनियर गस्टेव आइफिल ने डिजाइन किया था, इसी वजह से इसका नाम आइफिल टावर रखा गया।
1: इसका निर्माण साल 1887 में शुरू हुआ और लगभग दो साल में बनकर ये तैयार हो गया। उस समय इतनी बड़ी लोहे की संरचना अपने आप में बनना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: वाकई, करीब 330 मीटर ऊंचा ये टावर लंबे समय तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। सोचिए उस समय लोगों के लिए ये कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा।
1: दोस्तों, इस टावर में तीन मंजिलें हैं जहां लोग लिफ्ट या सीढ़ियों से पहुंच सकते हैं। ऊपर से पूरा पेरिस शहर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है।
0: और दोस्तों, रात का नजारा तो जैसे किसी फिल्म का दृश्य जैसा लगता है। हजारों चमकती लाइट्स जब इस टावर पर जगमगाती हैं तो पूरा माहौल जादुई सा हो जाता है।
1: और इसी वजह से इसे सिटी ऑफ लव यानी प्यार के शहर की सबसे खास पहचान माना जाता है। दुनिया भर के लोग यहाँ अपने खास पलों को यादगार बनाने आते हैं।
0: एक दिलचस्प बात और, इस टावर को शुरुआत में सिर्फ 20 साल के लिए बनाया गया था, बाद में इसे हटाने की योजना भी बनाई गई थी।
1: बिल्कुल, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगों और रेडियो संचार में इसकी उपयोगिता सामने आई, इसलिए इसे बचा लिया गया और आज ये पूरी दुनिया में मशहूर है।
0: क्या बात है। तो दोस्तों, आइफिल टावर हमें ये भी सिखाता है कि नई सोच और रचनात्मकता शुरुआत में लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन वही आगे चलकर इतिहास बन जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ लोहे की इमारत नहीं बल्कि इंसानी कल्पना, मेहनत और कला का शानदार उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम में आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आवाजें जो बरसों से हमारे जीवन के हर रंग में रच बस गई है।

0: ले सनम।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों, एफएम 102.6 पे सुन रहे हैं आप आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युवाणी। आपके दो रूढ़ी दोस्त, मैं स्वर्णिम,
1: मैं निकिता। दोस्तों, कभी आपने सोचा है धरती पर ऐसे भी जीव हैं जो इंसानों से भी पुराने हैं लेकिन फिर भी आज हमारी लापरवाही की वजह से खतरे में हैं?
0: और उन्हीं शांत, धैर्यवान और प्रकृति से जुड़े जीवों में से एक है कछुआ।
1: दोस्तों, कछुआ यानी टर्टल पृथ्वी पर लाखों सालों से मौजूद है। ये डायनासोर के समय में भी पुराने माने जाते थे लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इतने पुराने जीव को आज इंसानों से खतरा है।
0: और इसीलिए आज का दिन हम मना रहे हैं वर्ल्ड टर्टल डे। दोस्तों, ये खतरा किसी एक कारण से नहीं है बल्कि कई कारणों से, जैसे समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक कचरा, प्रदूषण, अवैध शिकार और उनके प्राकृतिक आवास का खत्म होना।
1: दोस्तों, टर्टल सिर्फ समुद्र या तालाब में रहने वाला जीव नहीं है बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये समुद्र की सफाई में मदद करते हैं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं।
0: लेकिन दुख की बात ये है कि आज कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। छोटे छोटे बच्चे कछुए समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि बीच में ही प्लास्टिक और प्रदूषण उनकी राह रोक देता है।
1: और यही कारण है कि वर्ल्ड टर्टल डे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो हमें याद दिलाने के लिए है कि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में कछुओं को देख पाएंगी।
0: सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा प्लास्टिक बैग अगर समुद्र में चला जाए तो वो किसी कछुए के लिए भोजन जैसा दिख सकता है और यही छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है।
1: इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, कचरे को सही जगह फेंकें और समुद्र या नदियों को साफ रखें।
0: और दोस्तों, सिर्फ सरकार या संस्थानों को जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है।
1: बिल्कुल, और कछुआ हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है कि धीरे चलो लेकिन लगातार चलो।
0: बिल्कुल, कछुए की यही धीमी लेकिन स्थिर यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता जल्दी नहीं बल्कि धैर्य और निरंतरता में होती है।
1: तो दोस्तों, शायद यही कारण है कि प्रकृति ने इसे इतना मजबूत बनाया है ताकि वह हमें सिखा सके कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों, आज वर्ल्ड टर्टल डे पर हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को साफ रखेंगे और इन मासूम जीवों की रक्षा करेंगे, क्योंकि अगर कछुए सुरक्षित हैं तो समुद्र सुरक्षित है और अगर समुद्र सुरक्षित है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है।
1: वाकई, फिलहाल दोस्तों वक्त है गीत संगीत का।

0: गाने को है ढल चुकी शाम गम, मुस्कुराने सनम।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर्स पे। भारत 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा
1: और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.87 ट्रिलियन का सरप्लस मंजूर किया।
0: आरबीआई ने कहा कि ईरान से जुड़े वैश्विक तनाव और बढ़ती तेल कीमतों का असर भारत की महंगाई और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
1: साथ ही रुपये में गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया।
0: आरबीआई ने बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए $5 बिलियन के डॉलर रुपी स्वैप की घोषणा की है।
1: इसी के साथ भारत और नॉर्डिक देशों ने सतत विकास और जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रैटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप पर जोर दिया है।
0: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है।

0: दोस्तों आपको अब ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, और उससे पहले आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। दोस्तों 2015 में आई फिल्म तमाशा एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। फिल्म तमाशा के मशहूर गाने अगर तुम साथ हो से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प बिहाइंड द सीन्स किस्सा है। तो दोस्तों दरअसल इम्तियाज अली ने रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण पर यह पूरा सीन शुरुआत में किसी दूसरे गाने के लिए शूट किया था, लेकिन एडिटिंग के दौरान मेकर्स को लगा कि वो गाना इस सीन की भावनाओं और दर्द को पूरी तरह उभार नहीं पा रहा है।
1: इसके बाद एआर रहमान ने अगर तुम साथ हो तैयार किया। जब इस नए गाने को पहले से शूट किए गए सीन पर लगाया गया तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगने लगा। किरदारों की खामोशी, चेहरे के भाव और टूटते रिश्ते का दर्द सब और ज्यादा गहराई से महसूस होने लगा।
0: और यही वजह है कि ये गाना आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है, क्योंकि इसके संगीत और दृश्य को मेल बेहद सच्चा और भावुक लगता है। तो चलिए दोस्तों आकाशवाणी पे ये गाना सिर्फ आपके लिए।

0: दोस्तों, वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करती हूँ हमारी बातों का ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं निकिता
1: और मैं स्वर्णिम
0: आपसे चाहेंगे इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 102.3.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल

0: पाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर, 1413 kHz पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म मौसम से, आवाज शाहिद मालिया की, गीत के बोल इरशाद

और लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत, मोहित चौहान और मोनाली ठाकुर की आवाज में, फिल्म कुछ लव जैसा से। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, धुन बनाई प्रीतम ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से। गीत के बोल इरशाद कामिल के, संगीत सोहेल सेन का और गीत को आवाज दी है नेहा भारसिन ने।

और लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत का अंतिम गीत सुनिए, नीति मोहन की आवाज में फिल्म जब तक है जान से। गीत को लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई ए आर रहमान ने।

0: कश्मीर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: पोटी कर, कोई नहीं, आराम से कर ले। हो गई, कर ली पोटी। अरे माया
2: आई माँ जी।
1: अरे ये पोछा वोछा बाद में लगाना, पहले चुन्नू की पोटी धुलवा दे।
2: लो दो,
1: इधर डाल, इधर पाँव पे लग रही है, इधर
2: से दो, उधर से दो, वो दो।
1: अब मेरा राजा बेटा अपनी माँ के पास दूध पीने जाएगा। माया मैं चुन्नू को बहू को देकर आ रही हूँ, तब तक तू ये चुन्नू की पोटी सामने जो खाली प्लॉट है ना वहाँ पे फेंक दे।
2: क्यों खाली प्लॉट में, क्यों बाहर, क्यों संडास में, क्यों नहीं? बाहर फेंकूंगी तो मक्खियाँ नहीं भिन आएंगी। हाँ
1: अरे तू कहना क्या चाहती है,
2: तो जरा सोचिए माँ जी। नहीं करेंगी, बीमारियां फैलाएंगी।
1: ये बात तो है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
2: तो अब सोचिए माँ जी।

0: शौचालय बनवालो।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल लिमिटेड ने

के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का के जरिए 19वें महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस भरोसे को और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। देश में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पूरे देश से चुने गए ये नए कर्मचारी रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी रेल सेवाएं देंगे। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने नव नियुक्त युवाओं से राष्ट्र निर्माण में पूरे मन से योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे में 1,60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से सरकारी सेवा को राष्ट्र सेवा का माध्यम मानते हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भावना से काम करने को कहा।
2: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्रों, जब कोई देश, कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है, तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है, ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है। इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
0: अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 258 और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 281 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। 1 मई से 22

इस मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू होगा। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अभियान की तैयारियों को लेकर आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान की ग्राम पंचायत स्तर तक गतिविधियों की मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप और रियल टाइम रिपोर्टिंग से की जाएगी। इस अभियान को लेकर विभिन्न जिलों में भी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर कानाराम ने ग्रामीण विकास, डांग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जल संरक्षण, आवास, स्वच्छता और विकास कार्यों को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। प्रदेश में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विलायती बबूल का उन्मूलन किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाकर काम करने को कहा है। आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के उन्मूलन से पौधों की स्थानीय प्रजातियों को संरक्षण मिलेगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। श्री दिलावर ने बबूल की लकड़ी से कोयला बनाने के लिए योजना बनाने को भी कहा। गौरतलब है कि विलायती बबूल अन्य वनस्पतियों को पनपने नहीं देता है। इसकी जड़ें 10 मीटर तक फैली होती हैं और ये अत्यधिक पानी सोखता है। 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा 2026 को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को मिलकर परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों और जिलों को विशेष निगरानी रखने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा। ये परीक्षा राज्य में 611 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बीच मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम में आए बदलाव से पूर्वी इलाकों के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। आज दोपहर बाद राजधानी जयपुर सहित सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली और भरतपुर, कोटा, बूंदी जिलों में बादल छाए रहे और धूल भरी आंधी चली। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी तो कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में तेज गर्मी का असर रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही इस दौरान कई जिलों में लू चलने के भी आसार हैं। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर
डीग पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कों, बाजारों और कोचिंग सेंटरों के आसपास मंचलों पर शिकंजा कस रही हैं। पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ ने बताया

0: कि ऑपरेशन डिकॉय के तहत महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहकर लड़कियों को परेशान करने वाले मनचलों पर नजर रख रही हैं। कॉलेज छात्रा पूजा ने बताया कि कॉलेज जाते हुए वे अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत। कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में बात करेंगे हालिया खबरों, गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ वन्य जीवों की। इन सब का ब्यौरा आप तक चिट्ठी में पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बालिकाओं की एक उपलब्धि की। जिले की विष्णोदा और मनिया की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ में हुई राष्ट्रीय जंबूरी में धौलपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में देश में पहला स्थान प्राप्त किया, साथ ही स्टेट गेट प्रतियोगिता में भी पहले नंबर पर रही। इन बालिकाओं ने राष्ट्रीय एकता और महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई शानदार रंगोलियां बनाकर ये उपलब्धियां हासिल की। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनसुनवाई की गई। इस दौरान जमाबंदी में नाम सही करवाने, अतिक्रमण हटवाने और पीएम सम्मान किसान निधि की राशि दिलवाने तथा राजस्व सहित कई प्रकरण प्राप्त हुए। इनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति में दर्ज दो प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद की ओर से 7 स्थानों पर विश्राम स्थल बनाए गए हैं। इनमें पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। ये सभी आश्रय स्थल भीड़भाड़ वाले इलाकों में बनाए गए हैं, जिससे राहगीर, बुजुर्ग और महिलाएं जरूरत पड़ने पर राहत हासिल कर सके। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण जिला चिकित्सालय में भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लू और तापघात के रोगियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर पिछले दिनों स्वैच्छिक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान प्रशासन की अपील पर लोगों ने 15 मिनट के लिए बिजली बंद रखी। इससे पहले प्रशासन की ओर से सभी लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान घरों में रहने को कहा गया। मॉक ड्रिल से पहले संबंधित थानों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर धौलपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने परेड की सलामी ली और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान शहीद वीरांगनाओं को भी नवाजा गया। जिला पुलिस और आरएसी धौलपुर 6 बटालियन की ओर से संडे ऑन साइकिल अभियान रखा गया है। इसके जरिए पुलिस सेहत और सुरक्षा का संदेश देगी। इस दौरान योग सत्र भी होगा। पुलिस ने इस विशेष कार्यक्रम में आमजन और इच्छुक नागरिकों के साथ ही विद्यार्थियों से ज्यादा भागीदारी की अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अब महिला प्रताड़ना और पोक्सो के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल महीने तक जिले में महिला अत्याचार के करीब 250 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 86 मामले जांच में झूठे पाए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि झूठी एफआईआर और फर्जी आरोप लगाने के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिले के सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर 12 अस्पतालों का पंजीकरण 5 दिन के लिए निलंबित किया गया। वहीं 2 चिकित्सालयों का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया। सीएमएचओ ने बताया कि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। जयपुर विद्युत वितरण

0: निगम की ओर से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली के लिए खास अभियान चलाया गया। इसके तहत राजाखेड़ा और मरीना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 15 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। जिले में जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों से यातायात नियमों की पालना की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में जन सहयोग से हेलमेट वितरित किए गए, वहीं बाइक रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। खनन विभाग ने धौलपुर जिले में 16 संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेज सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करयो जावेला। और राज्य रा उगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिश गर्मी थोड़ी साता मिली। कालू पारो ओजू चढ़वारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकारी नौकरियां लोगों ने जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो है। वह आज राखी जिया 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि देश कर्म योगियां माथे भरोसो जतायो है और इनने मजबूत बनावन री जिम्मेदारी कर्म योगियां री है। श्री मोदी कहो कि पूरी दुनिया भारत री विकास यात्रा रो हिस्सो बनवारी मर्जी रखे है। प्रधानमंत्री कहो कि भारत दुनिया रा कई देशां सागे साझेदारी कर रियो है, जिनरो मकसद नौजवाना ने नौकरी धंधा रा मौका और दुनिया रो अनुभव दिरावनो है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री नवी नौकरी लागिया कर्मचारियों ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बत्तो इस्तेमाल करन शुरू कहो। आखा देश माए 47 ठोणा रोजगार मेला लगाई चिया। इन दौरान 51,000 बत्ता मोटियारा ने सरकारी महकमा और संगठना माए नौकरी लगन रा कागजात सौंपी चिया। प्रदेश माए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर माए रोजगार मेला लगार 1,100 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लगन रा कागजात दिया चिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जयपुर माए राखी जिया रोजगार मेला माए शामिल थिया। इस मौके श्री वैष्णव नवी नौकरी लागण वालाओं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम रिसोच काम करण और देश बनावन रा काम माए पूरा मन योगदान देवन री अरज कीनी। वह कहो कि रेलवे माए 1,60,000 बत्ता ओहदा माथे भर्ती रो काम चाल रियो है, जिनसारू 4 करोड़ बत्ता उम्मीदवार भाग आजमा रिया है। जोधपुर माए राखी जा रोजगार मेला माए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मोटियाराओं सरकारी नौकरी ने देश री सेवा रो जरियो मानता थका हर पात्र जना ताई सरकारी योजनाओं रो फायदो पुगावन री भावनाओं काम करण बाबत कहो।
3: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्रों, जब कोई देश कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है। लेकिन

0: जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व तो उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
1: अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी 258 और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 281 उम्मीदवार ने नौकरी लगने का कागजात सौंपा। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड राजरा दांडेवाला फील्ड में नुआ गैस भंडार रोपतो लगायो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि करीब 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन री रेट प्राकृतिक गैस निकलबाऊ देशी ऊर्जा उत्पादन मजबूत बनेला। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहो है कि देश में तेल गैस री कोई कमी नहीं है और पेट्रोल डीजल री पूर्ति स्थिर है। कंपनी रे मुजब 1-22 मई बीच IOCL रा पेट्रोल री बिक्री माए 14% और डीजल री बिक्री माए करीब 18% री बढ़ोतरी थी। इन बीच तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल रा मोल माए और बढ़ोतरी करती नहीं है। ध्यान जोग है कि लारला 10 दिन माए तेल रा मोल माए तीजी दफा बढ़ोतरी करी ची है। लारला कुस्तीना माए करीब 5 रुपया प्रति लीटर री बढ़ोतरी फी है। केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 रवारा माए जनतारी राय सारू मसौदा नियम जारी कीना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब कोई जनो हितधारक संगठन या संस्था 21 जून 2026 ताई मसौदा नियमों जुड़ी आपत्तियां या सुझाव दे सके है। विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल जूना मनरेगा रिठौड़ लाइचियो है। नुआ कानून रातेत 1 साल माए 100 दिन री मजूरी री कानूनी गारंटी न बधार 125 दिन करण रो प्रस्ताव है। विकसित भारत जी राम जी कानून 1 जुलाई सगला राज्यों और केंद्र राज वाला प्रदेशों माए लागू है जावेला। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए सोमवार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू करियो जावेला। 5 जून ताई चलन वाला ई अभियान रे दौरान पानी बचावन जुड़िया काम करिया जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ई अभियान री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। मुख्य सचिव अहलकारा ने पानी बचावन री मुहिम जनता ने जोड़बा सारू कहो। ई अभियान री तैयारियां रातेत आज सवाई माधोपुर रा जिला कलेक्टर कानाराम ग्रामीण विकास डांग और पंचायती राज विभाग रा अहलकारा री मीटिंग लीनी और जरूरी हुकम दीना। प्रदेश माए जैव विविधता और पर्यावरण ने बचावन सारू विलायती बबूल ने हटाया जावेला। इन सारू पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज जयपुर माए अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान योजना बनार काम करण सारू कहो। श्री दिलावर बबूल री लकड़ी कोयलो बनावन री योजना बनावन बाबती हुकम दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट 2026 परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे परीक्षा ने निष्पक्ष साफ और सुरक्षित तरीकाओं करावन सारू संबंधित महकमा और प्रशासन ने मिलर काम करण बाबत कहो। मुख्य सचिव गड़बड़ी री शंका वाला परीक्षा केंद्र और जिला माए खास निगरानी रखण और जरूरी तादाद माए पुलिस रा जवान तैनात करण बाबत ही कहो। आ परीक्षा राज्य माए 611 परीक्षा केंद्र मत है। दोपहर 5:00 से 5:30 ताई ली जावेला। नीट री ई परीक्षा माए 2,00,000 विद्यार्थियां रे शामिल फेवन रा आसार है। मुख्य सचिव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रा बीकानेर रा प्रस्तावित दौरा री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू ही अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे सरहदी जिला माए हिफाजत और निगरानी री व्यवस्था और असरदार बनावन रा हुकम दीना। डीग माए महिलावां और टाबरियां री हिफाजत सारू पुलिस री कालिका पेट्रोलिंग यूनिट

0: سڑکاں، بازاراں اور کوچنگ سینٹر کنے خاص نگرانی رکھ رہی ہے۔ ایس پی کامبلے شرن گوپی ناتھ بتایو کہ لڑکیاں نے پریشان کرن والا خلاف آپریشن ڈیکوئے راتیت مہیلا پولیس سادہ کپڑا پہر کاروائی کر رہی ہے۔ وہ بتایو کہ بی این ایس ایس ری دھارا 170 راتیت بنا وارنٹ گرفتاریاں کری جا رہی ہے۔
1: जिले में जो कालिका पेट्रोलिंग जो टीम है वो अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। जैसे बेसिक हेल्पलाइन जो होती है 1090 या 1098 1930, इस तरह से अलग अलग जो हेल्पलाइन है उसका अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा देना, साथ में जो सेल्फ डिफेंस है आत्मरक्षा का जो ट्रेनिंग है उसको भी अलग अलग स्टूडेंट्स को स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाकर उनको देना, ये भी काम उनके द्वारा किया जाता है। राज का ऑफ सिटीजन ऐप है, जैसे लगभग हर महीने अगर आप देखोगे तो एवरेजन जो है वो 600 जो राजकोप एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने का जो टारगेट है वो कालिका पेट्रोलिंग टीम ले रही है और उसको पूरा भी कर रही है।
0: कॉलेज छात्रा पूजा बतायो के पुलिस री ओर खुद री हिफाजत री सिखावन देवनु कॉलेज जाते वगत व बत्ती हिफाजत महसूस करे है।
2: यहाँ पर कालिका यूनिट है वो हमको गाइड करती है कि हमको जैसे घर से बाहर निकलते टाइम या जो कमेंटबाजी करते हैं छेड़खानी करते हैं उनको कैसे पुलिस तक उनकी सूचना देनी है, उसके लिए हमको एक ऐप भी बताया गया है राजकोप ऐप, उसके थ्रू हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1090 जिससे हम बाहर निकलते हैं तो अगर कोई भी दिक्कत होती तो हम उसके थ्रू पुलिस को शिकायत कर सकते हैं।
0: अरे मौसम प्रदेश का उगनी हल्का माए आज आंधी सागे भी हल्की बारिश हूँ गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली दोपहर पाछे सवाई माधोपुर जयपुर टोंक दौसा करौली भरतपुर कोटा और बूंदी समेत कई जिला माए बादला मंडिया रहा और आंधी चाली कठे कठे छांटो छिड़को भियो तो कठे कठे हल्की बारिश हुई। दूजी कानी राज्य रा आतुणी और उत्तराध हल्का माए तेज गर्मी रही। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वा रा आसार है जदका कई ठोड़ा लू बाजन री शंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई दीतवार ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर जो सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेत सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करियो चावेला। और राज्य रा उगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिश हो गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली कालू पारो ओजू चढ़वा रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: FM 102.6 MHz मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

चौपालसू कार्यक्रम ने सुन बाला सारा किसान भाई और बणियन कताई दन्ना भाई के डिस गनी गनी राम राम भाई बनाओ। गर्मी को टर्म चाल रही है, गर्मी का टर्म पर जो है अपन कताई कई सावधानी रखनी पड़े, अपनी खेती बाड़ी में भी कई अपन कताई काम करनी पड़े। आप कताई बता दें

0: वो जो पुराणो किशनगंज बस्यो छो
1: जी
0: और आज को जो किशनगंज छ काई काई अंतर आ गया?
1: देखो शुरुआती दौर से ही जब से गांव बस्यो ये गांव में करीब करीब सभी समाज का प्रबुद्ध लोग ना लार यहाँ बसाया गया, चाहे खेती बाड़ी से जुड़े हुए नागर समाज का लोग हो, चाहे पूजा प्रतिष्ठा करवा वाला ब्राह्मण समाज का लोग हो, चाहे व्यापारिक दृष्टि से अपन देखा तो महाजन समाज का लोग हो, गांव का शुरुआत से ही सभी समाज का हर वर्ग का लोग लालार दूसरी जगह से यहाँ बसाया गया, ताकि गांव में सब आपस में एक दूसरा का सहयोग से एक दूसरा की आजीविका चलाता रहे, वक्त जरूरत एक दूसरा का मदद करता रहे।
0: बहुत बढ़िया। आज को जो किशनगंज मुख्य रूप से काई काई सुविधा जो आपके यहाँ?
1: देखो शुरू से ही स्टेट टाइम से ही किशनगंज पुरानो गांव रियो से, तो आजादी के बाद भी यहाँ सारा जो सरकारी उपक्रम हो सरकारी ऑफिस हो गांव में ऊपर से प्रशासन ने भी प्राथमिकता दी। काफी पहले यहाँ तहसील खोली गई, वही दौर में बहुत समय पहले यहाँ कोई न्याय कचहरी पुराना जमाना में उसी हुआ भी यहाँ थी, और थाना और कचहरी की स्थापना भी यहाँ बहुत पहले से मतलब शायद बसावट का दौर में ही होगी थी, शुरुआती दौर में।
0: एक अलावा जैसे आप स्वास्थ्य सुविधा की बात करा,
1: अब मौजूदा समय में समय के साथ साथ गाँव को विस्तार हो यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक अच्छी फैसिलिटी को हॉस्पिटल यहाँ उपलब्ध से, यहाँ विभिन्न विभाग का ऑफिस से एन जयन बैठे से SDM सब डिवीजन मुख्यालय हो गए, एरिकेशन की बात करा तो IN की पोस्ट से, पेयजल विभाग का IN की पोस्ट से, पर तो सरकार ने भी यहाँ प्राथमिकता दी, यहाँ न्यायालय की स्थापना हुई बार इस साल में ही, यहाँ ADJ कोर्ट की भी शुरुआत हुई, तो सभी विभाग का दफ्तर यहाँ से, और आमजन के लिए खुशहाली के लिए जो भी आवश्यक चीजें जो वो सब मूलभूत आवश्यकताओं की यहाँ पूर्ति हो रही।
0: मतलब एक तरह से देखो जाओ तो आज की तारीख में किशनगंज संपन्न जो
1: संपन्न और समृद्ध
0: हर तरीका
1: बिल्कुल।
0: अच्छा ये संपन्न करवा के लेख आप कहते कहीं कहीं प्रयास करनी पड़ी है
1: लंबा समय से, धीरे धीरे यहाँ को विकास हो तो आ रहे हो, यहाँ का लोग भी शुरू से जागरूक रिया से
0: जी।
1: समय समय पर जी भी चीज की आवश्यकता महसूस हुई उनके लिए सब जागरूक लोगों ने प्रयास कराया
0: बिल्कुल,
1: और सरकार और ऊपर का लोगों ने भी सब लोगों की बात सुनी, थोड़ी सी अगर यहाँ बार कोई कमी चे तो कुछ सिंचाई का संसाधन की से, पर उनके लिए भी लार्ज स्केल पर प्रयास जारी से
0: बिल्कुल। सिंचाई की जो बात करी आपने तो सिंचाई में काई कमी चे किशनगंज?
1: देखो यहाँ मुख्य रूप से लोगों की आय को सोत्र खेती किसानी से
0: जी,
1: और यहाँ जो नहरी तंत्र स्थापित छे बिलासी डैम को
0: जी,
1: वो उनका बिल्कुल टेल क्षेत्र पर किशनगंज आ रहे हो, तो समय पर वो नहर में पानी की उपलब्धता नो पावे की वजह से कुछ किसान अपना अपना पिछड़ापन में महसूस कर रहे, अगर वो ही पानी समय पर आ जाओ तो सब किसानों में और बढ़िया समृद्धि आओ
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसके लिए जो हमारा जनप्रतिनिधि से वहाँ से समय समय पर डिमांड करता रहूं सा
0: जी,
1: और कोई कमी रहेगी तो समय के साथ साथ उनकी पूर्ति करवा को प्रयास कर रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने आकाशवाणी से बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
1: राम राम।
0: एक ये दाज साहब और बैठे थे यहाँ सुकरा, राम राम। राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
0: क्या नाम जा आपको?
2: रंगलाल साहब।
0: कितना साल की उम्र हो गई आपकी?
2: हमारी 75 साल की उम्र।
0: 75 साल की उम्र से 75 द्वारे आपने देख ली।
2: अब काम करो जो तो फिर बटिया रहा था,
0: खेती बाड़ी के
2: बीघा, खेती बाड़ी 40 बीघा, बच्चा करे।
0: अच्छा फसला ले
2: गेहूँ और सोयाबीन चना धनी लसन
0: आज कहीं करो आप?
2: आज तो गेहूँ और लसन करियो।
0: लसन में बार बार पानी चाहो?
2: हाँ लसन में पानी चाहो।
0: पानी को कहीं साधन जा आपके पास?
2: कुछ तो नहर को आयो तो नहर से दे लो, और ट्यूबेल आटी उटी किराया से दी।
0: यो यहाँ आपको कोई डैम वेम भी बन रहे हो?
2: हाँ
0: तो इसु आपको पानी ना होगा?
2: आउट पर आउटलेट न मिल रहा क्या नहर में साहब?
0: तो कहीं सुधार होनी चाहिए
2: उम्र तो आउटलेट भी होना चाहिए, और ये के अलावा ज्यादा ही पानी छाव जमा तो फिर कन्या तब बन जाओ तो यो जो तलाव को पानी खराब हो जाए वो भी सारो यहाँ आ जाओ। कन्या दे धार्मिक स्थान से नदी चाहिए, नदी बांध रहा तलाव में बौरगढ़ का तलाव में
0: वहाँ कहीं बांध होनी चाहिए?
2: हाँ बांध होनी चाहिए। सीधो नहर में आ जाओगे, पुरानी जो नई नहर बन रही है ना वो में आ जाओगे।
0: अच्छा मतलब पानी जो आया के बाद में किशनगंज की जो पानी की समस्या थे वह सारी
2: सारी
0: दूर हो जाओ,
2: पूरी हो जाओ।
0: अच्छा वो ये निकट सो पानी पर्याप्त मतलब वो तो फिर कहीं

0: फसलों पास
1: ज्यादा तो बरसात की फसल होगी, धान ज्यादा होगी साहब उसमें।
0: अच्छा धान हो जाओ
1: पूरी बरसात
0: पानी के लिए कभी पर्याप्त पानी मिल जाए,
1: गेहूँ के लिए कभी पर्याप्त,
0: मतलब कुल मिलाकर पानी की जो कमी है वो दूर हो सके। अच्छा ये कल जैसे अपन ये ट्यूबवेल वगैरह कुआ बोरिंग
1: वाटर लेवल ऊपर आ जाओ
0: तो यहाँ में कितनी लेवल पे यहाँ पानी मिल रहा है?
1: यहाँ अपन 150 पौना 200 250 ज्यादा ऊंडो न जा रही।
0: अच्छा इमें आराम से पानी मिल रहा है तो कई जगह तो आपने देखा जाता है साहब को 200 300 300 500 तक पानी ना रहा और यहाँ 100 150 पे भी पानी मिल रहा है, कई कारण जी को
1: माँ के गांव में तो नदी से साहब तो नदी की वजह से भी वाटर लेवल ऊपर चाल रहे थे 150 फुट पे चाल रहे थे 150 पौना 200 फुट पे ज्यादा ऊंडो न चाल रहे और वो पर्याप्त मोटर ना चाह रही है
0: की कहावत भी जगह खेत को पानी खेत में और गाँव को पानी गाँव।
1: हाँ
0: तो अपन जो किसान चाहिए ये अपनी वाटर लेवल का धीरे धीरे नीचे तक होता जा रहा है, यानी धरती माता को जो पानी जो नीचे जा रहे हो वो मैं अपन किसान ही कारण था तो कई कारण था अपने में कैसे अपन वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे बढ़ती जा रही
1: है, ज्यादा मोटर चल रही है साहब
0: रात दिन दोन कर रहे हैं
1: रात दिन
0: पानी खींच रहे
1: हैं अपन गर्मी में भी बहुत शान बारा की फसल तो वो चाल रही है।
0: अच्छा गर्मी में कैसी कैसी फसल हो रही है?
1: गर्मी में तो यही मूंग और उड़द दो चीज ही बोरा की।
0: अच्छा तो बढ़िया हो रही
1: है? हल्की हो रही है, ज्यादा बढ़िया तो न हो रही।
0: अगर किसान चाहो तो तीन फसल ले सके,
1: तीन ले सके जो ना चाहो तो
0: आप भी ले सको तो चाहो तो।
1: हाँ माँ भी ले सका
0: था, फिर आप कहाँ न लियो
1: माँ का तो ट्यूबवेल कोयले साहब
0: पानी की सुविधा होगी तो आप ले सको।
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया साहब आपने मन से बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
0: एक और अपन बताए किसान देख रहे थे कराचा राम राम
2: राम राम राम साहब राम
0: कई नाम से साहब
2: रामदयाल
0: अब कहीं खेती बाड़ी को काम करो छो
2: धान की खेती करा जा
0: धान कर लाओ और कहीं ले
2: गेहूँ कर ले धान
0: मतलब धान और गेहूँ ये दो फसल ले छो मैं ये बताओ कि अब जो धान के फसल अपन करेंगे यानी टर्म आबाड़ो छो तो वह कह देने के भाई पानी का पहली पाल बांध नहीं चाहिए तो आपने धान का लेकर बार था कहीं कहीं तैयार
2: है बाढ़ तो कहीं जो तैयार कर दी 1 जून से पोत बाऊंगा 1 जुलाई से पोत लगा वो चालू कर देगा
0: तो किसी किस्म को धान की पौध पाओगे
2: 17-18 पाओ जमा
0: बीज लियो न लियो आप
2: नहीं बीज लेगा इसको सर्टिफाइड बीज लेगा
0: बीज लियो जो मतलब प्रमाणित प्रमाणित बीज ही लियो जो हमेशा
2: प्रमाणित ले जाओ उपज ज्यादा मिले
0: जो प्रमाणित बीज न ले रहे तो प्रमाणित लेबा में न लेबा में काई फर्क पड़े जैसा
2: एक तो उत्पादन को फर्क पड़ जाए दूसरा गोटा टाइप दूसरा बीज आ जाओ तो फिर वो मजदूर आम टाइम लागे बनवा एक दाणो बीज लेने
0: बहुत बहुत बढ़िया सोच। अच्छा जो बीज उपचार अपन खाच तो उपचार करो तो ना करो
2: उपचार कर ले जाना
0: कसा करा जाए उपचार
2: वो एक लाल दवाई सी आओ जी तो पानी में लार चढ़ा कर सुको कर लेना जड़ा में कीड़ा न लागो मतलब ये नाजुक पौधो रहे शुरू में तो दीमक गीमक यहाँ से बचाव हो जाओ
0: एक का बच्चे का जैसे छोटा बाल बच्चा का अपन टीको लगा
2: टीको टाइप जो
0: टीको ही
2: एक तरह का
0: बीज को तो बीज का टीको जरूर लगानी चाहिए
2: जरूर लगानी चाहिए
0: तैयारी कर रहे आप ना कहीं जुताई कर ली अब आगे कहीं कहीं तैयारी गट रही है कहीं कहीं करना पड़ोगे
2: तो एक दो बाग में पानी छोड़ दे यहाँ पोत बाऊंगा ताकि जमीन ठंडी हो जाओ फिर वो दो चार वक्त आके बीज छड़ा
0: तरीको जा अपनी पोत तैयार कैसे करा जा कई तरीको
2: भाई क्यारा बना लेगा और बढ़िया जो होता है वो मैं खा तो आज जो फाक लो जो फाक देगा और फिर छाट बीज और उनला दे जा आगड़ी से
0: अच्छा
2: तो मिट्टी में गल मलो जाओ ज्यादा ऊंडो भी ना जाओ पानी छोड़
0: भी मलाओ
2: उस आगड़ी से ला दे जा मिट्टी में गल मलो जाओ कुछ कुछ दब जाओ 10-20% उगाल रहे जाओ ताकि चिड़ी चूड़ी लाओ ना चुगा कोई ना
0: अच्छा
2: पानी छोड़ देना ट्यूबवेल को
0: एक दिन छोड़ा जाए
2: एक बार तो बढ़नी पड़े जाए फिर रोजीना एक एक बार छोड़ दो पानी बस
0: अच्छा तोड़ तोड़ छोड़ता था
2: आप छोड़ पानी खाली कर दो जहाँ तक पौधे उब ना हो जाते हैं गेलो कर पानी काट दो
0: जैसे
2: छोटो पौधो रहे अगर डूबी रहोगे तो गल जाओ
0: और जैसे तावड़ो पड़ोगे पानी गर्म हो जाओगे तो बड़स भी जाओगे
2: हाँ तो मतलब खाली कर पास गर्म ना हो
0: पानी शाम की छोटा सुबह छोटा
2: सुबह
0: पानी
2: खाली कर दो बिल्ली से
0: और फिर एक बाद
2: में खाद छाटा 10-15 दिन को होता है।
0: अच्छा 10-15 दिन को होता है
2: यूरिया छाट दे बढ़ोतरी बढ़ जाओ
0: कितना दिन को लगा होगा
2: 25 दिन को।
0: अच्छा 25 दिन को जो बीज तैयार हो जाओगे आप
2: दूसरी जगह ग्रेड में चाल लगा दिया फिर वो जब

0: कहाँ हो रही है अब काय कारण से
1: पता हो मौसम को ऊपर कर रही है काय कर रही है
0: ले भाई जैसे पल्ली तो मनमान सुहाई भी नो हो जी अब कहाँ हो रही काय कारण रो जी
1: अभी को तो काय काय न मान
0: अब कितना किलो बिकाई की हो रही है
1: मान हो रही है लगभग 25 किलो बिकाई की हो रही है
0: अच्छा
1: काय बीज भी निकली जब बढ़िया अगले साल तो फिर भी थोड़ी बोरी
0: फिर जब खड़ी ना पा रहे तो वही अपन अशु काम भी क्यों करो
1: हां कर रहे हैं जी
0: क्या कर रहे दान नहीं करेगा दान में काय तैयारी करी साहब आप
1: अब दान में तो वर्षाला तो पोत बाव जाए तो पोत भी ना मरे तो उराई की करेगा
0: अच्छा उराई की करेगा नहीं भी तरीको पड़ा करेगा तो उराई में और जो ये दूसरो दान अपन करेगा जो पोत लगाई में ये में काय अंतर छे
1: काय अंतर आयो बस उराई की भी करबाला ने करी जो कभी वाई कडीर मांग लगाई की भी वाई कडी लागत ज्यादा आ रही है
0: उराई वाला में भी वाई कडी
1: हां
0: और लगाई वाला में भी
1: वाई कडी
0: तो दोनों में जो आपदा ज्यादा की बचे
1: लगाई में
0: लगाई में खर्चो ज्यादा पैसा ज्यादा की में लाग रहे है
1: लगाई की
0: तो फिर उराई की कर ले अपन
1: हां जी उराई की करेगा ले साहब
0: अजय कचरो ज्यादा की मोर रहे
1: है कचरो उराई की
0: उराई
1: अरे एक ही चीज सुमात का हो जो कचरा ना तो लगाई के
0: तो कचरा के लेगा अपन अशोक काही उपचार करा ताकि वो कचरो भी ना हो और काम भी आपनो बड़े हो जाए पैसा भी कम लागा और उत्पादन भी
1: हां वो कचरा कोई वो उपचार हो मतलब
0: तो काय करा उनको लेके बताओ
1: वो उनको लेके करो काय काय भाई कचरो उमे कम होनी चाहिए जैसी करो
0: भाई उमे या तो आपन जैसे मान लो बढ़िया अकाई जुताई करा एक बार आ कर ना रह जाओ दो तीन बार आ जैसे आपन गढ़ में पीसल लगा रहे जन
1: बोले का बस भी काय वो को ज्यादा इंदर ने बरसे को ने ज्यादा वो कर जो कचरो भी लोगो ऊपर को पानी बरसे को ने जब ही उगा जो
0: दान कब लगा होगा
1: अब दान तो कर दे 15 जून के बाद स्टार्ट कर दे 15 जून का
0: पूरा यालो 15 जून का बाद
1: तो इको ऊपर से बरसबा को ऊपर वो जल्दी बरस जाओ जल्दी कर दे अगर ना बरसे तो को बाजी होगो तो रहे
0: कुल मिलार बात है थे पूरा यालो ही फायदा में
1: 4000 में भी को तो वही बच जाओ जो लगावा कौन करे अड़ को सारा कर तो 4000 में कम ना बटे
0: वो 4000 में सो अगर आधा भी अपन बढ़िया का ही जुताई में लगा दे तो फिर कचरो के क्या होगो
1: अब का ही जुताई हुआ था बता रहे तो कचरो को क्या के बाज हो अब उस समय अगर टाइम मिलो ना मिलो और अशो तो और बागो टाइम आ जाओ जब ना खगा और बजाओ का अमन सूखा माग बस कचरो थोड़ी उठे को सूखा में तो अपन 10 बार आ गए तो ना उठे
0: आपने मां से बात करी बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब
1: राम राम साहब
0: एक किसान और देख रहे थे यहाँ शुक्र राम राम राम राम साहब
2: राम राम
0: कई नाम जी साहब आप
2: कैलाश सुमन जमान नाम
0: आज आप कैलाश जी खेती बाड़ी करो जो
2: हाँ
0: अब जो आप कहा जाकर गर्मी की जुताई अगर आप कर लिया तो जो कीड़ा मकोड़ा और खर पतवार का बीज वो नष्ट हो जाओ तो गर्मी की जुताई करी ना करी आप
2: कटी जमीन तब जाओ जर थोड़ी उपजाऊ जाओगी
0: किसू करिए आप
2: अड़सू का 2-3 साल में कराऊ तो कल्टी
0: अच्छा तो आज तो कल्टी सुई कराई
2: तो कल्टी सुई
0: और 2-3 साल पाचे कल्टीवेटर सुख रहा
2: वो
0: तो अगर आप हर साल कल्टीवेटर सुख करा लिया तो कान का दर्द में नुकसान हो जाओगे
2: ना नुकसान तो नहीं होगा
0: तो काय होगा फायदो होगा
2: हाँ फायदो तो लागत ज्यादा थी केवल ना का लोग
0: फायदो तो होगा
2: हाँ फायदो तो
0: काय काय फायदो
2: हो मतलब नीचे की मिट्टी उपजाऊ कड़ी आओगी आप ऊपर की जो दवाई सुध केमिकल जो खत्म होगा ऊपर की नई मिट्टी आ जाओगी
0: और जो ऊपर का खर पतवार का नीचे चल जाएगा
2: अंदर दब जाओगा
0: नीचे जाने के बाद में अगर आप मालिक गड़ो भी करेगा ना तो कचोड़ो बेगो न
2: बेगो नो को घूम दब जाओ
0: आप अगर मान लीजिए गड़ा में पीसा लगा रहे जब वहाँ पीसा अगर काय में पल्ली लगा दे
2: तो फायदो
0: आपने घर ही जुताई तो कराई थी अब काय तैयारी कर रहे हैं जो फसल की आगे काय लेगा
2: कार मूंगफली बाऊ था माता
0: अच्छा
2: थोड़ा अलगी जमीन से
0: बहुत बढ़िया
2: बाड़ू हुए तो मुझे मक्का और मतलब मूंगफली बाऊ
0: तो
2: सोयाबीन वो वही ना मतलब बरसात होता है उससे फूल आते ना कमी पानी आता है तो फूल सूख जाओ जी बाऊ ही ना माता
0: सोयाबीन का फूल ही सूख जाए
2: और सूख जाओ गर्मीदार के जमा का मतलब
0: अच्छा गर्मीदार
2: थोड़ी काड़ेगार
0: तो आपका तो उमा मूंगफली मक्का
2: मक्का
0: तो आपन जो सोयाबीन मर गड़ा में जो फायदो ले सका था वो मूंगफली पर मक्का में भी ले सका था
2: वो तो जाओ दूसरी फसल टाइम पे जाओ जो टाइम पे जाओ तो ये आलू कर दे
0: जैसे मक्का में मूंगफली में उतरो पीसो मल जाओ आप
2: कहते बापर तो कहते तो करे जा ज्यादा वो तो टेक रहा
0: अरे मूंगफली कर पाओ तरीको का कैसे तरीका उसे लगाओ
2: चाट भला के चाट और तो यही चाट करे जे और बम तो मुंगिया फूट जाओ आजकल तो समझ है पैसा आ सोर दे जा जे मले एक एक मुंगियो डल जाओ तू और गए ये अब तो जाए चाट ऐसे एक टैग ट्रांक
0: आज चाट बला आ गया
2: हां चाट बला आ गया
0: चाट बम दियो कान का तो कम ज्यादा पड़ जाती हो
2: ना कम तो ना पड़े वो पर आधा मुंगिया थोड़ा एक दो सो खत्म हो जाओ तू हां उगाड़ा
0: रे बड़ा चाट फिर गए उन दोनों देने पड़े वो
2: तू तो आ करे वो टैग को खड़ रदन पाचे
0: अच्छा
2: तू तो लाइव जी दब जाओ अभी कोई मुंगिया रे तो दबा दे जावन आंगणे तो दबा दे दार पर दब जाओ
0: यो तो और बाबू तरीको छे।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर।

श्रोताओं, कार्यक्रम माटी के स्वर में आज आप सुनेंगे अलग अलग लोक कलाकारों द्वारा गाए गए लोकगीत। आज आप सुनेंगे देवीलाल गुर्जर, चुन्नी मारवाड़ी, गौरी देवी और भोजराज कोचर को इस कार्यक्रम में।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आपने सुना देवीलाल गुर्जर, चुन्नी मारवाड़ी, गवरी देवी और भोजराज गुर्जर को। इसी के साथ राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर यहीं समाप्त होता है। FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर, 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। 8 बजे हैं और लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दम मारो दम से। आवाजें ऐश किंग और सुनिधि चौहान की, गीत के बोल जयदीप साहनी के, संगीत प्रीतम का।

और अब श्रोताओं, चित्रपट संगीत में अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं आतिफ असलम की आवाज में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। और लीजिए, आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं फिल्म सिंघम से, आवाजें श्रेया घोषाल और अजय की।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं इस वक्त कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं चित्रपट संगीत में अगला गीत, जुबिन नौटियाल और पलक मुचाल की आवाज में फिल्म काबिल से। गीत के बोल नासिर के और धुन बनाई राजेश रोशन ने।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: जी, थोड़ी सी ना जा दे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

और लीजिए श्रोताओं, अब चित्रपट संगीत में आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित को फिल्म लव ब्रेकअप्स जिंदगी में। गीत के बोल जावेद अख्तर के, संगीत सलीम सुलेमान का।

चित्रपट संगीत में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हॉन्टेड से। गीत लिखा शकील आजमी ने और संगीत चिरंतन भट्ट का।

और लीजिए श्रोताओं, चित्रपट संगीत का अंतिम गीत सुनिए राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म बॉडीगार्ड से। शब्द रचना शब्बीर अहमद की, धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का आज का अंक। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट

0: कोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ

0: मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल

0: युआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: चंबल चैनल पर आपकी पसंद के फिल्म गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी पेश किया जा रहा है। श्रोताओं, आप सभी का बहुत सारा अभिनंदन है और आपकी आवाज इस टेलीफोन नंबर के जरिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। टेलीफोन नंबर 29411 42, एसटीडी कोड भी आप लगाते हैं कोटा शहर का 0744। वक्त होता है गुरुवार और दिन 11 बजे से 12 बजे तक, और प्रसारण का समय यही तो है ना, शनिवार की ये रात का वक्त है जबकि 9 बजे हैं और आपको 2 दिन के लंबे समय का इंतजार अब पूरा करने की बारी आ गई है। तो आप सब श्रोता अपना अपना स्वागत कीजिए और इधर से हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं कि आपके कानों में गूंजे आपकी ही आवाज और रेडियो पर बजे आपकी ही पसंद के गीत और साज। और राजेश महावर कर रहा है इस कार्यक्रम का आगाज। नमस्कार, कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, स्वागत करते हैं आपका चंबल चैनल की ओर से। नाम
1: सर, वंदे मातरम सर, नमस्कार, मैं बनियापारा धमतरी से बोल रहा हूँ, रामचंद्र मटिया काफिर भाई सर।
0: क्या बात है साहब, वंदे मातरम आपने बोला, इसका अर्थ क्या है?
1: इसका अर्थ है हमारा जो धरती है, माता है, उसको हम वंदे मातरम कहते हैं और देश के अनुसार भी हमें यह प्रिय है, जो वीर क्रांतिकारी हुए हैं उनको ये एक प्रकार की ऊर्जा देता है। तो वंदे मातरम जब हम बोलते हैं तो देश के प्रति ऊर्जा पैदा होती है और शरीर के रोम रोम में नसें खोलने लगती हैं जो जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति।
0: क्या बात है साहब, क्या बात?

0: है। और वंदे मातरम का जो अर्थ है वो है माता को नमन, माता को वंदन, है ना जी। और वंदे भारत मातरम का अर्थ है भारत माता को नमन। क्या बात है साहब। रामचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि देशभक्ति का जज्बा कार्यक्रम में आपको जाए।
1: अपना देश के प्रति, भारत देश के प्रति अपन सजग जागरूक रहें, ईमानदारी से रहें, यही हमारे सीख दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो करते क्या है रामचंद्र जी?
1: मेरा छोटा सा रेडीमेड का काम है सर, कपड़ा रेडीमेड, जैसे सिले सिलाए के वस्त्र आते हैं ना, उनको बेचते हैं, शर्ट नाइटी जींस वगैरह।
0: अच्छा।
1: और साइड में गमछा वगैरह रखते हैं, जैसे गर्मी आ गया, कभी छत्ता हो गया, बरसात सीजनी आइटम साइड साइड में रहता है।
0: जी जी जी तो कैसा चल रहा है आपका काम?
1: चल जाता है, अब भगवान की कृपा से दाल रोटी निकल जाता है सर।
0: घी लगा कर गए ना
1: दाल रोटी? तो अपने होता नहीं, इसलिए सादा भोजन उच्च विचार।
0: अच्छा अच्छा घी की आवश्यकता नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है, सादा जीवन उच्च विचार। तो कार्यक्रम के आरंभ में बताइए कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं जो आपकी
1: आप
0: भावना को व्यक्त कर दे।
1: है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसको सुनाएंगे सर, पूरा पश्चिम का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए सुनाएंगे। और ये तो देशभक्ति का जज्बा जगाने वाला गीत है।
1: जी जी,
0: है ना, हमारे भारतवासी देशभक्ति के जज्बे से वैसे भी लबालब रहते हैं।
1: हाँ।
0: तो रामचंद्र जी आपका काम बहुत अच्छा चलता रहे, और देशभक्ति का ये जो तरंग है, ये उमंग है, ये जीवन भर बनी रहे, और आपसे जो मिले उनमें भी देश का जज्बा बरकरार रहे। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। ये रहा आपकी पसंद का गाना।
1: ओके सर, वंदे मातरम, और आइएगा धमतरी घूमने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धमतरी घूमने।
1: ओके सर, वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम।

0: नमस्कार, कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, आपका स्वागत करते हैं।
1: अरे राजीव जी नमस्कार। भाई साहब
0: नमस्कार। साहब कैसे हैं?
1: छोटे नंबर ही घंटी उठाई आज आपने।
0: आप पूरा हिसाब रखते हैं।
1: 22 साल पूरा जिला बनाजी सतीश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ सर।
0: जी सतीश जी, आपकी आवाज और आपका जो वर्णन होता है ना, अभिव्यक्ति
1: जी भाई साहब,
0: वो अद्वितीय है।
1: अच्छा अच्छा भाई, धन्यवाद आपको।
0: तो बताएं आज कैसा लग रहा है
1: सर? एक फिल्म आई थी बीवी और बीवी सन 1981 में।
0: अब हमें ऐसा लगता है कि गाना भी आप वही सुनने वाले हैं जो शायद हमने सोच लिया।
1: गाने ऐसे सुनता हूँ आपको सटी, यार मैं सटी गाने सुनता हूँ जो कभी सुनने को कम मिलते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मेरी आपके, मैं तो आपसे तो कम बात होती है, लोग यही कहते हैं यार सतीश जी आप गाने कहाँ से निकाल के लाते हो। तो फिल्म का नाम है बीवी और बीवी, गायक कलाकार किशोर कुमार जी, लता जी।
0: हाँ।
1: और गीत के बोल, एक नहीं दो नहीं 200 बार कहूँ मैं जमाने से तुमसे है प्यार।
0: यारा ओ यारा तुमसे है प्यार।
1: साहब ने संगीत दिया एजी वर्मन साहब ने, कलाकार थे रणधीर कपूर और पूनम ढिल्लो।
0: और
1: इसकी एक ख्वाहिशत और फिल्म की मैं बताऊँ आप इस गीत की
0: जी।
1: ये गीत सर वीडियो नहीं बना, केवल ऑडियो बन के रह गया।
0: फिर
1: ऑडियो ही चलता रहा बस, आज तक वो ऑडियो में आता है।
0: अच्छा, मतलब फिल्म में इसको नहीं लिया गया।
1: फिल्म में तो है मगर ये, अब देखो ये फिल्म तो मैंने देखी नहीं, मगर ये क्या वीडियो नहीं बना, ऑडियो बना।
0: वरना हम तो आपसे ये पूछने वाले थे सतीश जी कि जिस तरह आपने पिछले अपनी फरमाइश के दौरान ये जिक्र किया था, गाना आपने सुना था, उसमें आपने ये तक बताया था कि जो अभिनेता अभिनेत्री है उन्होंने किस तरह के वस्त्र पहन रखे थे।
1: जी जी जी। जैसे मैं एक और बताऊँ आपको, एक फिल्म और थी आशा
0: जी,
1: उसका गीत भी था मोहम्मद रफी, लता जी ने गाया था। तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, आनंद भक्ति साहब का लिखा गीता, लक्ष्मीकांत तेजा संगीता, जितेंद्र रीनर आए थे उसमें।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे गीते और भी सुपरहिट हुए थे उसके, तुमको सलाम है, तुमको सलाम ये गीत है, ये भी सर वीडियो नहीं बना, ऑडियो बन के रह गया।
0: और कुछ
1: गीत, हाँ ये फिल्म

0: भगवान जाने कैसे फिल्म में शामिल नहीं किए, मगर ये वीडियो बन के नहीं बने, ऑडियो बन के रह गए।
1: क्या बात है। तो मतलब आकाशवाणी की ये खासियत है कि यहाँ पर ऑडियो चलता है, इसलिए आपको गीत सुनवा दिया जाएगा।
0: जी भाई साहब,
1: है ना सतीश जी, बहुत शुक्रिया।
0: और उसके बाद जो आपके केंद्र से जो नित्य नई जानकारी के साथ जो हेलो डॉक्टर आता ना कार्यक्रम,
1: जी
0: वो भी बहुत बढ़िया लगता है। और हमारे राम नारायण जी मीणा साहब है ना
1: जी,
0: जो एक प्रोग्राम पेश करते हैं रात को,
1: रात रानी के फूल,
0: रात रानी के फूल, वो भी जो मान लो रात रानी के साथ माता माला में एक एक फूल तिनके चुन चुन के लाते, ऐसे गीत सुनाते भाई साहब, ऐसा लगता है जैसे वीरवास छाया गीत आ रहे हो
1: है जी। और उनके गाने जो है वो ऐसा लगता है कि उसकी माला के फूल हैं, और उनकी जो आवाज है वो उस माला के धागे की तरह लगते हैं, है ना।
0: वैसे उनकी आवाज है, मैंने वीर बार सिर्फ शायद गीत भी सुने, ऐसी बात नहीं
1: जी, वो वहाँ तक पहुँचे हैं साहब।
0: हाँ, क्योंकि आज से लगभग 3-3.5 साल पहले आते थे, मैंने सुना वहाँ से।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो बिल्कुल, और आपकी जा तो संदेश दे दूं
1: जी। हाँ,
0: लगभग गर्मी बहुत ही तेज है भाई साहब, तो एक तो अपने घर की मुंडेर से किसी पार्क में पानी भरे स्नाने के लिए दाना डाले, और अपनी छत के अपने कमरे के अपने अपने दरवाजे के बाहर कोई पुरानी टंकी हो कुछ हो ना तो उसमें पानी, ताकि बेजुबान जानवर फिर पक्षी अपना पेट पालन कर सके बेचारे।
1: वाकई वाकई। और कहीं पर इस तरह का उस पात्र को खाली देखें तो उसको भर भी दें, है ना।
0: मैं तो रोजाना सर अपने खेत पे जाता हूँ तो घर से 4 पीपिया भर के ले जाता हूँ, तो मैंने पेड़ के आंवले के पेड़, हमारे पिताजी की तरह हो रहे आंवला आंवले का पेड़ लगा, उस पे मैं मटकिया टांग रखी सर मैंने।
1: आहा, क्या बात।
0: और रात की जो रोटी बच जाती ना तो उसको टुकड़े करके डाला, ताकि वो कहते भगवान तुम्हारा भी भला करे।
1: वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया। तो बी जुबानों की ये जो जुबान है ये आपने सुन ली है आखिर, और आपने औरों को भी सुनने के लिए कहा है।
0: तो आपकी जय परिवार के नाम ले दूं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी,
0: मैं हूँ कवाई सालपुर सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता जी श्रीवास्तव, हिमानी अर्चिता भी ठीक। अरे यही भाषा में माइंड भाषा बोलना चाहता हूँ, मैं बोलू सा कवाई साहब तेरो ससारो सतीश श्रीवास्तव, मारा घर से जोड़ा प्रेमलता एक नायन के अभिषेक श्रीवास्तव बेटिया हिमानी अर्चिता, और प्रोग्राम खुद तन में सुना था।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सतीश जी, आपने दोनों बोलियों में ये बातें कही। लेकिन
0: साहब अपने सूरतगढ़ केंद्र से प्रोग्राम आता है, आप ये इसी भाषा का माइंड भाषा का आता है ना गोरबंद
1: जी,
0: उसमें लगता फोन जो सीख गया मैं धीरे धीरे।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन आपने एक बात महसूस की होगी, हंसी की भी कोई भाषा नहीं होती है ना।
0: नहीं नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। हाँ,
1: बिल्कुल वैसे जैसे संगीत की भी कोई भाषा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी पसंद का ये गीत बीवी ओ बीवी फिल्म से परिवार के साथ मिलकर सुनिएगा सतीश जी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी और आपका बहुत सारा स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन साहब?
1: सर मैं परमेश्वर शिंदे बात कर रहा हूँ, ग्राम आनंदगांव जिला जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: परमेश्वर शिंदे
1: ग्राम आनंदगांव जिला जालना महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, हम मराठवाड़े से बात कर रहे हैं सर जी।
0: आनंदगांव से ना? और कैसे है आनंद में सब?
1: सर हमारा गांव तो अच्छा है सर।
0: क्या विशेषता है आपके गांव का?
1: हमारे गांव की अभी हमारे गांव में अभी तो ये अंतेश्वर का मंदिर है। अभी ये मंदिर हमारे महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं था। उसका देवस्थान है, अंतेश्वर मंदिर बोलते हैं उसको।
0: तो ये कितना बड़ा मंदिर है और किस किस देवता का मंदिर है ये?
1: सर अभी तो मंदिर तो बहुत अच्छा है सर, अभी तो पुराना मंदिर है, अभी तो पुराना बांधकाम है।
0: अच्छा,
1: अभी तो बांधकाम तो अच्छा है। अभी बहुत से लोग आते हैं दर्शन लेने के लिए दूर दूर से। वो अंतेश्वर बोलते हैं उसको नाम, वो देवस्थान का नाम अंतेश्वर मंदिर हम बोलते हैं।
0: हाँ, लेकिन मूर्ति वहाँ किस देवता की है ये बताएंगे आप?
1: अभी मूर्ति तो अभी वो ये बिरोबा है, बिरोबा बिरोबा बोलते हैं ना, बिरोबा
0: बिरोबा। अच्छा अच्छा।
1: हाँ, वो घोड़े पे बैठता है ना, वो उसकी मूर्ति है, वो घोड़े पे वो ये देवस्थान।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है। परमेश्वर जी क्या करते हैं आप?
1: सर जी हम लोग खेती करते हैं ना, अभी खेत में से अभी सर।
0: अच्छा, खेत में ही हैं अभी आप?
1: खेत में है, अभी तो बाजरा निकल रहा है और बाजरे की अभी खेत में अभी तो मशागत चालू है, हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर चालू है अभी तो।
0: आहा आहा, तो बाजरा वहाँ कब कब खाया जाता है, सर्दियों में या हमेशा?
1: अभी हाँ हमेशा, अभी तो साल भर बाजरा खाता है।
0: साल भर बाजरा खाया जाता है वहाँ?
1: हाँ जी, हमारे यहाँ तो अभी तो।
0: वाह वाह वाह, तो मुख्य अनाज कौन कौन से हैं आपके वहाँ के?
1: हमारे अनाज है मुख्य अभी तो बाजरा है, गेहूं है, अभी तो ज्वार है,

0: ठीक है। परमेश्वर जी बहुत अच्छा, आप खेती करते हैं, रेडियो सुनते हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी?
1: आपकी पढ़ाई हो गई सर 5वीं तक हुई थी।
0: अच्छा, 5वीं तक हुई थी जी।
1: जी
0: कौन से सन में आपने 5वीं कर ली थी?
1: अभी तो सन 1991 में अभी तो फाइनल हो रही थी 5वीं।
0: अच्छा, तो उसके बाद पढ़ाई आपने करना मुनासिब नहीं समझा या कोई और कारण हो गया था?
1: अभी तो पढ़ाई अभी खेत में अभी तो काम करने के लिए हमारे यहाँ तो अभी हमारे पिताजी के हाथ में कोई नहीं था तो खेत में काम
0: अच्छा, आपने उनका साथ
1: करने
0: दिया,
1: हाँ उनके साथ दिया पिताजी को।
0: बहुत अच्छा। तो खेतीबाड़ी में आपने जब बेलों से हकाई होती थी वो देखा?
1: सर जी हम लोग अभी तो रेशम की खेती भी करते हैं। हम लोग ने अभी तो रेशम लगाया है, तुत्ती लगाई है।
0: अच्छा,
1: जी रेशम की खेती कोस बनाते हैं हम।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो उसमें कैसा आपका मुनाफा हो जाता है रेशम की खेती में?
1: अभी सर जी मुनाफा तो बहुत अच्छा है सर जी, अभी तो पानी कम लगता है इसके लिए।
0: और उसमें मेहनत कितनी लगती है?
1: मेहनत तो अभी तो बाकी फसल की होती है, उसकी फसल की मेहनत होती है। अभी गन्ने की मेहनत करते हैं ना,
0: जी
1: हाँ उसकी मेहनत है अभी तो।
0: अच्छा,
1: अभी साल में 4 बार उत्पन्न मिलता है यहाँ का।
0: जी परमेश्वर जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लग रहा है। अब हम ये चाहेंगे आपको भी अच्छा लगे, आपकी
1: हाँ
0: पसंद का गाना बताइए।
1: सर जी मेरी पसंद का गीत है, फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल,
0: जी
1: और गीत के बोल है चाहत से है बेगानी मेरी सुबह हो शाम।
0: ओहो, गाना
1: हाँ सर
0: पसंद है आपको, है ना? ये
1: हाँ सर जी गाना तो बहुत अच्छा है सर
0: गाते
1: जी।
0: भी हैं आप?
1: हाँ सर जी गाते हुए अब
0: कैसे गाते हैं, सुनाइए।
1: सर जी अब चाहत से वे गानी मेरी सुबह हो शाम।
0: आहा, शर्मा गए आप।
1: हाँ जी सर जी
0: ठीक है परमेश्वर जी, ये रहा आपकी पसंद का गाना। आप मोबाइल ऐप पर सुनते हैं?
1: हाँ मोबाइल एप्लीकेशन पे है सर जी।
0: ठीक है, तो फिर मोबाइल ऐप पर ये रहा आपका पसंद का गाना आपके लिए। बहुत धन्यवाद
1: हाँ
0: फोन
1: बहुत
0: करने
1: बहुत
0: के लिए।
1: धन्यवाद,
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: जी

0: किराने की दुकान लगा रही।
1: अच्छा, तो किराने की दुकान के बाहर बैठते हैं या अंदर बैठते हैं?
0: हाँ, ये नीम का पेड़ है नीचे आंगन में, बाहर हवा खाते हैं।
1: अच्छा, क्या बात है अब्दुल हकीम जी, आप तो सारी बातें ऐसी कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। नीम का पेड़ आजकल देखने को नहीं मिलता।
0: अरे हमारे पापा ने, हमारे बाबूजी ने लगाया था, 50 साल पुराना पेड़ है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तो
0: और मेरी उम्र भी 55 साल है।
1: अच्छा, तो अब्दुल हकीम जी, इससे आपको क्या सीखने को
0: मुझे
1: मिला कि
0: बहुत
1: पिताजी ने जो पेड़ लगाया, आप उसकी हवा खा

0: मेरी उम्र भी 55 साल है।
1: अच्छा, तो अब्दुल हकीम जी, इससे आपको क्या सीखने को मिला कि
0: मुझे बहुत
1: पिताजी ने जो पेड़ लगाया आप उसकी हवा खा रहे हैं, आप जो पेड़ लगाएंगे उसकी आपके बच्चे आपके पोते पोती खाएंगे, है ना?
0: हाँ वो भी खाएंगे
1: तो आप क्या
0: लगा
1: सीख
0: लगा
1: दे
0: नहीं।
1: अच्छा तो आप क्या सीख देना चाहते हैं इस तरह से?
0: बढ़िया होता है, ठंडी हवा, बीमारी दूर होती है नीम के पेड़ के
1: बिल्कुल,
0: नीचे।
1: बहुत बढ़िया। तो अब्दुल हकीम जी,
0: हाँ जी,
1: आपने ये बताया कि आपका नाम अब्दुल है और पूरा नाम अब्दुल हकीम है,
0: हाँ जी, हाँ।
1: और जो हकीम होते हैं वो उपचार करते हैं, क्या आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं?
0: नहीं, मेरा तो किराने की दुकान है
1: अच्छा,
0: और सिलाई का ही काम करता
1: बस
0: हूँ।
1: यही काम करते हैं ना,
0: हाँ
1: और रेडियो
0: रेडियो,
1: सुनते हैं।
0: हाँ रेडियो सुनता हूँ।
1: आपको कुछ याद है आपने पहली बार रेडियो कब सुना होगा?
0: और बहुत, मैं तो बहुत पुराना, कम से कम जब का वो समाला जब सुनता हूँ,
1: आहा,
0: 30-40 साल हमारे पिताजी का रेडियो था, मर्सी का, है
1: अच्छा,
0: ना, वो मर्सी के रेडियो में सुनता रहा। सेल वाला रेडियो चलता था ना,
1: हाँ जी, हाँ
0: लोहार
1: जी।
0: वाले, वो वाले।
1: अभी सुरक्षित रखा हुआ है आपने वो?
0: हाँ अभी भी रख रखा, उनकी निशानी के तौर पर
1: क्या बात
0: रखा
1: है,
0: हुआ।
1: तो
0: अब
1: उसको।
0: अभी ये मोबाइल से करता हूँ मैं फोन।
1: अच्छा, तो अब्दुल हकीम जी बताइए कौन सा गाना आपको सुनवा दे?
0: गाना नहीं मेरा तो, मतलब वो भजन है ना उसका, भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना।
1: अब्दुल हकीम जी, जो भजन आप सुनना चाह रहे हैं वो दरअसल एक फिल्मी धुन पर आधारित एक भक्ति गीत है। आइए आपको वो हम गीत सुनवाएं जो इसकी धुन पर आधारित है, ठीक है? सुनिए।
0: धन्यवाद,
1: हाँ
0: शुक्रिया।
1: जी।

0: हेलो सर, नमस्ते सर।
1: नमस्ते। कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।
0: मैं विदिशा से विकास कुमार बोल रहा हूँ
1: विकास कुमार जी, क्या करते हैं विकास जी?
0: जी। मैं बिजनेस करता हूँ सर,
1: क्या बिजनेस है आपका?
0: इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम का।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम का।
0: जी जी
1: ठीक
0: सर।
1: है जी, कभी हम विदिशा आए तो आपसे खरीद लेंगे कुछ,
0: जी जी बिल्कुल
1: है
0: सर।
1: ना?
0: सर मुझे गाना सुनना था।
1: बिल्कुल, गाना हम सुनवाएंगे। आप ये बताइए, रेडियो कब से सुनना शुरू किया आपने?
0: रेडियो सर मैंने अभी अभी चालू करा, जब से मेरा मन कर रेडियो सुनूं। आज वो मोबाइल में गाने लगाता हूँ तो वो समझ में नहीं आता, तो मैंने कहा रेडियो सुनूं, कुछ
1: अच्छा,
0: जानकारी मिले रेडियो
1: हमारा
0: सुनने
1: कहने का
0: को।
1: अर्थ है, कितने समय से आप रेडियो सुना करते हैं?
0: कभी कभी सुन लेता हूँ सर, मैं
1: अच्छा अच्छा
0: ऐसा नहीं सुनता हूँ
1: अच्छा
0: जी सर।
1: ठीक है, बताइए कौन सा गाना।
0: मुझे कुछ कहना है टाइटल
1: कहिए कहिए, जो भी
0: सॉन्ग
1: कहना है
0: सर,
1: आपको।
0: मुझे कुछ कहना है फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनना है सर मुझे।
1: अच्छा, यही गाना सुनना है ना?
0: जी जी सर। हाँ
1: अच्छा,
0: सर।
1: विकास कुमार जी कुछ पूछें हम आपसे,
0: जी सर।
1: जिंदगी में हंसने खिलखिलाने का क्या मूल है?
0: जिंदगी में हंसने और खेल खिलाने का सर एनर्जी बूस्टर कहलाती है वो चीज़ तो सर।
1: बिल्कुल, और हंसी मजाक ऐसी होनी चाहिए कि किसी को बुरा न लगे, है ना?
0: जी सर।
1: और हाँ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है।
0: जी
1: ठीक है
0: सर। जी
1: विकास
0: सर।
1: जी,
0: जी सर।
1: हम यही चाहेंगे, आप हंसते खिलखिलाते रहिए,
0: जी
1: किसी
0: सर।
1: से भी आप
0: बिल्कुल
1: बात
0: सर।
1: करें तो आपकी मायूसी वहां तक ना पहुंचे, बल्कि आपकी खुशी वहां तक पहुंचे। ठीक है साहब, ये रहा आपकी पसंद का गाना, मुझे कुछ
0: जी सर।
1: कहना
0: जी
1: है। शुक्रिया,
0: सर। धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: हो, गाने में बड़ी जोर की हवाएं भी चली थी। श्रोताओ, हवाएं चलें तो खुशबू वाली चलें, प्रसन्नता वाली चलें, अपने जीवन को महकाने वाली चलें। इन बात का अपने परिवार में, अपने संगी साथियों में हमेशा ख्याल रखिए। और आपका साथ देने के लिए चंबल चैनल आपके साथ है ना?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, लक्ष्मण सिंह चंदेल सर, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से।
0: बहुत ही प्यारा नाम है आपका, और बहुत ही प्रेम से, अदब से अपने नाम का आपने सम्मान किया है।
1: सर, और आपकी आवाज की सर हम दीवाने हैं सर, आप जब भी प्रोग्राम लाओ सर, मस्त प्रोग्राम लाओ सर। आपकी जो बोलने की शैली सर बहुत,
0: अरे लक्ष्मण जी, आपकी भी तो कितनी अच्छी शैली है ना? ये आपको किसी ने नहीं कहा?
1: अरे सर, कहा तो
0: कहा है ना, बताइए उसका, उनका नाम कौन है, किन्होंने कहा था?
1: एक हमारे अंकेश समदरिया जी हैं सर।
0: अंकेश समदरिया, ये आपके मित्र हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, तो उन्होंने प्रशंसा की आपकी?
1: जी, उन्होंने की। और सर, आकाशवाणी के सागर की लगाओ तो भारतीय भी लगाओ थे, तो सर लोग बात से करते थे कि आप गुंजली में बात कर रहे थे, लोग किसी आपस बात हो।
0: तो लक्ष्मण जी, ये आपकी जो बोली है ये कहाँ की है?
1: सर अपनी वैसे की है सर, बुंदेलखंड।
0: अच्छा, बुंदेलखंड की है, है ना?
1: सागर के आगे सर दमोह जिला पड़ता है।
0: दमोह जिला, तो वहाँ से हैं, दमोह जिला से हैं आप?
1: जी जी सर, आगे सर कटनी है सर, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे।
0: अच्छा अच्छा, कटनी 50 किलोमीटर ही पड़ता है आपसे?
1: जी जी।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है जी। काम क्या करते हैं आप?
1: सर हम तो खेती बाड़ी करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ा ही नेक काम करते हैं आप।
1: जी सर।
0: मसूर की उपज कैसी हुई है?
1: मसूर सर 7 क्विंटल कर रही है करके सामने।
0: अच्छा, तो आपने वैज्ञानिक तरीके से की थी खेती या कैसे?
1: हाँ सर, मतलब जो कछु आप आकाशवाणी केंद्र में बताओ तो अनुसार हमारा चला
0: था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैविक खेती के बारे में भी कोई विचार किया आपने लक्ष्मण जी?
1: नहीं सर, तो वही को उपयोग कर रहे हैं अपन तो।
0: अच्छा, जैविक का ही कर रहे हैं?
1: जी जी सर, 2-3 बने हैं तो देसी वाले खाद यूज नहीं कर रहे।
0: क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आपने जैविक उपज की तो उससे खेत भी स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: जी जी सर।
0: हाँ, मिट्टी भी तंदुरुस्त रहती है।
1: जी जी, और अपने लान भी स्वास्थ्य के लाने सही है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये बताइए, आपने फोन क्यों किया हमें?
1: सर, गीत सुनने के लिए।
0: अच्छा, गीत सुनवाए आपको?
1: जी, और गीत के बोल भी बताते रहे सर।
0: अच्छा, तो गा के सुनाइए ना।
1: सर गा तो नहीं मिलेगा।
0: अरे ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, हम आपकी पसंद का गाना चला रहे हैं, उसके साथ ही आप गुनगुनाइएगा, ठीक है?
1: बिल्कुल जी जी।
0: लक्ष्मण जी, बहुत सारा धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।
1: ओके सर।
0: हाँ जी।

तो श्रोताओं, सुरीले गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी बस यहीं तक। आप सभी श्रोताओं ने बड़ी मासूमियत से, हृदय की सच्चाई से इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महीने के अंतराल के बाद आप फिर से प्रयास कीजिएगा वही नंबर लगाने का, जिससे आप अपनी पसंद के गाने सुन सकें, अपनी कुछ बातें तमाम और श्रोताओं तक पहुंचा सकें।

दूर दराज तक ये कार्यक्रम आप सभी श्रोता सुनते हैं। श्रोताओ, हमारा ये प्रसारण आप किस माध्यम से सुन पाते हैं इसका जिक्र हमें जरूर कीजिए। हमारा ईमेल enjoyeirkota@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर 95301 20 20। हमें ये जरूर बताइए किस माध्यम से आप चंबल चैनल का ये प्रसारण सुनते हैं, यदि FM पर, यदि मीडियम वेव पर और यदि न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुनते हैं तो भी। कार्यक्रम का संयोजन तेजराम मीणा का, निर्देशन हिमांशु नामा का, और अब राजेश महावर आपसे चाहता है अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी FM 102.3.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। रात्रि के 10 बजने को है, अब से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। कहते हैं जिसे मोहब्बत हो गई उसे अपने महबूब के अलावा दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। इश्क में डूबे इंसान को अपने महबूब की हर चीज दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत चीज नजर आती है। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी, नाजुकी, उसका हुस्न, उसकी नजरें। जिसने तेरी नजर को देख लिया उसको दुनिया नजर नहीं आती। सच, उन्हें देखकर ये लगता है जैसे हर अधूरी मोहब्बत मुकम्मल हो गई हो।
1: कहां से लाई हो जान।

अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता भीगी हुई एक शाम का मंजर, तेरी आंखें। आप इश्क में हैं और दिल में जख्म ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तमाम दर्द और जख्म के बाद भी दिल लगाना भला कौन छोड़ पाता है। जख्म झेले, दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए भी बहुत। वो तमाम पन्ने जिन पर लिखी है तेरी मेरी कहानी, सच कहूं इश्क हो जाएगा मेरी दास्ताने इश्क से। रात भर जागा करोगे इस कहानी के लिए।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल गया। उनके आने के बाद भी देर तलक उनका इंतजार रहा। कभी चांदनी रातों में तेरे ख्वाबों में खो जाते थे हम, अब अकेले रातों में तेरी यादों में बिखर जाते हैं हम। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूं, दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम, उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम। न पूछ कैसे गुजरती है तेरे हिजर की शाम।

जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है, जब आंखों में सितारे चमकते हैं शाम से पहले। दिल की चाहत होती है तुम बैठो कुछ देर हमारे सामने यकीन के लिए। दवा जरूरी तो नहीं हर वक्त सुकून के लिए। तुम्हें पता है जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। ये शाम की तन्हाइयां तेरी यादों के काफिले, एक कसक, एक टीस, एक सूनापन, एक अधूरी सी आहट। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। मेरी हर शाम तेरी याद की हमराज रही।

जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया। एक ही मिट्टी से हम दोनों बने हैं, तुझ में और मुझ में मगर फासला यूं कितना है। पूछते हो तो सुनो, है और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है। वो मुझको टूट के चाहेगा, छोड़ जाएगा, मुझे खबर थी उसे ये हुनर भी आता है। कब लौटा है बहता पानी, बिछड़ा साजन, रूठा दोस्त, हमने तो उसको अपना जाना जब तक हाथ में दामा था। वक्त के बदलने से दिल कहां बदलते हैं जाना, वक्त के बदलने से दिल कहां बदलते हैं जाना। आपसे मोहब्बत थी, आपसे मोहब्बत है।

अक्सर पूछते हैं लोग, किसके लिए लिखते हो? अक्सर कहता है दिल, काश कोई होता। साथियों, इन्हीं अफसानों के साथ पूरा होता है आज के छाया गीत का सफर। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में